FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: smack them back.
1: Yeah.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मैन इन द हाउस कम ऑन

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: ان پہ لاکھوں درود و سلام۔ سامع ناظرین، اس وقت ہم براہ راست آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، معلومات کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے، لوکل ہمارا یہ پروگرام ہے، 12:13 ہوا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے، چونکہ یہ روٹین کے پروگرام جس طرح ہمارا شروع ہوتا ہے، ہم لوکل ہیں، لوکل انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں، کمیونٹی دیتے ہیں یا کمیونٹی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی رائے مہمانوں سے لے کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کی آواز کے تھنک ٹینک سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تجربہ کار ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں، کمیونز کو سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں، قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں، اور ٹیکسی برانچ میں سالہ سال سے ان کا تجربہ ہے، بہت سارے اس برانچ میں ان کے شاگرد بھی ہیں جو آج کل بڑے بڑے وان مین بنے ہوئے ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے طریقے سے اچھا کام کر رہا ہے، اور جو خبریں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں یا جو ان کی معلومات ہوتی ہیں جہاں سے یہ اسٹڈی کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو سمجھنا آپ خود بھی تحقیق کیا کریں، نہ ہی کبھی ان کا دعویٰ رہا ہے کہ آپ یہ تحقیق نہ کریں، نہ ہی انہوں نے کبھی کہا ہے کہ آپ سرچ نہ کریں۔ تو لہٰذا سیکھنا سکھانا ایک دوسرے کے لیے بہت ہی اچھی بات ہے، انسانیت کی بات بھی ہے، سیکھنا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے ہمارے ساتھ سید تقیر حسن بخاری شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسنر اور ناظرین سب کو السلام علیکم، اور پوری امت مسلمان اور پوری امت جو ہے دنیا میں رہتی ہے، سب کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ یہ مختلف ڈیٹس ہیں، مختلف طریقے ہیں، 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک، اور بعض جو ہیں وہ اس کے بعد بھی میلاد مناتے رہتے ہیں، گھروں میں میلاد ہوتے ہیں، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور ہر جگہ جو ہیں وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور منائے لوگ جو ہیں وہ مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اپنے خیالات کے مطابق، ان کی اپنی آزادی کے مطابق وہ جس دن کو چاہیں، کیونکہ یہ پورا ماہ جو ہے ربیع اول کا، یہ ہمارے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو یہاں پہ لوگ جو ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں۔ تو آج بھی ایک جو کافی مسلمان جو ہیں آج بھی 17 کو عید میلاد منا رہے ہیں، کچھ کل منا رہے ہیں، کچھ آگے جا کے منائیں گے، تو ہم ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری کرے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہم سے جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کرے، اور ہمارے جو ساتھی اور مائیں بہنیں اور بچے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ سب کے لیے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا، بہتر کرنے والا ہے۔ راجہ صاحب، آج موسم جو ہے وہ تھوڑا سا سرد ہے، اتنا بھی سرد نہیں، لیکن 18-19-20 تک ڈگری تک گرمی ہے، لیکن بادل چھائے ہوئے ہیں، شام کو بھی کافی بارش ہوئی، کہیں کہیں بارش بادل آ جاتے ہیں، ٹکڑیاں آ جاتی ہیں، تھوڑی بہت بارش ہو جاتی ہے، لیکن اب ایسا موسم شروع ہو رہا ہے جو جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں پت جڑ کا موسم کہتے ہیں۔ یہ پت جڑ کا موسم جو ہے یہ سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک جاتا ہے، اور یہ جو موسم ہے اس کے اندر جیسے درختوں سے پتے جڑتے ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی اولویٹرنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر بھی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، یعنی کہ ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں ان کی تبدیلی آتی ہے، جسم میں تبدیلی آتی ہے، اور باقاعدہ بعض لوگوں کو کھانسی لگ جاتی ہے، بعض کو ریشے کی بیماری ہو جاتی ہے، زکام کی بیماری ہو جاتی ہے، لیکن یہ بیماریاں نہیں، یہ وہ جرثوم ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو باہر نکلتی ہیں، جو انسان کے اندر جمع ہوگی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ میڈیسنز کھا کر یا انجیکشن لگوا کر اپنے اندر ان چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور یہ سننے اور دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کینسر کا بھی سبب بنتے ہیں۔ لہذا جو قدرت کی طرف سے جو پت جڑ آپ کے جسم میں آیا ہے اس کو باہر نکلنے سے مت روکیے گا، हाँ अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर जो है वो मशवरा करें और जो मेडिसिन डॉक्टर लिख के दे उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इतने भी कम कपड़े ना पहने और खसूसी तौर पे गाड़ी का जो टेम्परेचर है एयर कंडीशन है उसकी देखभाल जरूर करें। और बाहर के जो इस वक्त पतझड़ के जमाने में अगर आप किसी साइड स्ट्रीट में जा रहे हैं किसी जंगल से गुजर हो रहा है और हल्की हल्की बारिश है या कुछ तो आप जो सड़क का माहौल है उसको जरूर देखें क्योंकि पत्ते जो होते हैं जब ये सड़क पे गिर जाते हैं तो ये बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक स्लिपरी होते हैं और यहाँ पे ब्रेकें जो है वो बाज़ औक़ात काम नहीं करती। तो लिहाजा आपको बड़ा एहतियात करनी चाहिए। अगर आप 60 किलोमीटर पे जा रहे हैं तो 50-55 पे जाएं ताकि ब्रेकें जो है वो गाड़ी जो है वो अपने वजन के हिसाब से ब्रेकों को कंट्रोल कर सके। तो ये चीजें देखने की हैं। जी राजा साहब आपका कोई सवाल?
0: शाह साहब, आप मालूमात की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, ज़रा पहले ले लेते हैं। शाह साहब, आपने ज़िक्र किया ईद मिलादुन्नबी का, तो बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जारी रहेंगे, सितंबर में भी लोगों ने डेटें दी हुई हैं, हमसे भी राबता होता रहता है, जाने का मौका भी मिलता है, सुनने का मौका भी मिलता है। कल बड़ी हमने इल्मी गुफ्तगू सुनी मक्की मदनी मस्जिद में, जो है मदनी मिस्टर कल्चरल इंस्टीट्यूट में, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, हाउसफुल प्रोग्राम था, बड़ी इल्मी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। इसी तरह और दूसरे उलमा भी बात करते रहते हैं, जहाँ जहाँ किसी सेंटर में ये इल्मी गुफ्तगू होती है सुनने का मौका अगर मिलता है या किसी को भी मिलता है, तो शाह साहब एक बात सामने आती है कि सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, आशिक रसूल हैं, लेकिन शाह साहब जिस कुरान पाक का ज़िक्र करते हैं, जो उनकी तारीफ़ में हम बातें करते हैं या उलमा बात करते हैं, सुन्नी करते हैं, शिया करते हैं, सुन्नी फ़िरके के, फ़िरके तो आपको पता है बने हुए बना लेते हैं, तो शाह साहब उसमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया, जो उलमा फरमाते हैं, तो शाह साहब उस पर अमल करने की तरफ कोई जाता नहीं है, क्या वजह है?
1: अमल जो है इसकी हदायत जो है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही हम लोगों को बता दी थी कि आने वाले सदियों में आने वाले जगह पे आपको मुख्तलिफ किताबें पढ़ाई जाएंगी, आपको मुख्तलिफ ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको गलत मुझसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझसे उसको आपको गलत हदीसें बताएंगे और काफी बातें करेंगे। इससे इससे ये बात होगी है कि हर बंदा जो है वो ये समझता है कि मैं चंद दिनों के लिए अगर मैंने कोई ऐसा क्राइम कर लिया, ऐसा जुर्म मैंने कर लिया है तो वो मैं चंद दिनों के लिए जहन्नम में जाऊंगा लेकिन उसके बाद मुझे वहां से निकाल लिया जाएगा और मैं वापस जन्नत में चला जाऊंगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शफात करेंगे। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद जो है इसकी बिल्कुल अपोजिट निशानदेही करता है। कुरान ये कहता है कि तुम वैसी किताबें ना बनाओ जैसे ईसाइयों ने बनाई, यहूदियों ने बनाई और अपने मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स आपने फिरकों में आप बट के। तो इस चीज पे सूरत अल बकरा को आप शुरू करें तो वहां पे आपको सबसे पहले ये चीज यही मिलेगी जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो सितारा शनास हैं, ये जो उलमा है जो मेरे मेरे आयात को पढ़ पढ़ कर बेचते हैं और ये जो उनसे कमाई करते हैं और इसी तरीके से ये सब सब फिरकों में है, ये किसी एक फिरके में नहीं है, सब स्कूल ऑफ थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ और ये कुरान मजीद में लिखा है और इसी तरह वहां पे लिखा गया है कि पहले जो फिरके थे उनमें क्या गलतियां पाई जाती थी, वो किस तरीके से वो भी मुसलमान थे लेकिन वो किस तरीके से बदल गए, किस तरीके से उन्होंने अपने मुख्तलिफ फिरकों को अपने ऊपर मसल्लत कर लिया और किस तरीके से वो अपने दीनों से हट गए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो हर दफा है वो बिल्कुल अपने नबी को मानते थे, अपने रसूल को मानते थे और वो उनकी किताब को मजबूती से पकड़ रखे। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो बिशारत की है कुरान मजीद के अंदर निशानदेही की है कि वो जन्नत के जन्नत में जाएंगे और बाकी सबको मैं दोजख का जहन्नम का ईंधन बनाऊंगा।
0: तो शाह साहब, इससे साबित होता है कि जो अल्लाह ताला की या इलामी किताबें हैं, अल्लाह पाक की किताबें हैं, तो जो जो उतरी जिन जिन रसूलों पर उतरी, तो उनका जो असली मकसद था वो सबको स्टडी होना चाहिए। एक ही अल्लाह है तो अल्लाह की तरफ सारे रजू करते हैं। तो शाह साहब, ये तो इलमी गुफ्तगू की बात हो रही थी, ये तो बहुत बड़े बड़े उलमा ही बात कर सकते हैं, हम तो निशानदेही कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं जवाब सुनने के लिए। तो शाह साहब, मौसम का आपने जिक्र किया, बीमारियों का अक्सर हम जिक्र करते रहते हैं, आप भी बताते रहते हैं, टैक्सी ब्रांच का जिक्र किया, चूँकि ये हमारे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह 5 बजे घरों से निकल जाते हैं और शाम तक ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बाल बच्चों का पेट पालते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। शाह साहब, अगर सड़क पर हम जब देखते हैं तो ट्रैफिक का ये हाल है कि आप 15-15 मिनट जो है एक चौक में खड़े रहते हैं, इसी तरह मोटरवे पे भी जी काफ़ी देर छुट्टी के टाइम जो है लंबी लाइनें, मीलों लंबी लाइनें नज़र आती हैं, कछुए की तरह गाड़ियां मोटरवे पे भी चल रही होती है। तो शाह साहब, कम्यून जो होती है, कोपेनहेगन कम्यून की पार्लियामेंट है, इसी तरह कोपेनहेगन की जो कम्यून को इसको पार्लियामेंट के मेंबर भी कहा जाता है, कोपेनहेगन की होती है, तो दूसरी कम्यूनों को शायद ये एजाज़ नहीं मिलता, बाकी भी सारी पार्लियामेंट बनी हुई है। तो शाह साहब, सारी चीज़ें होने के बावजूद जो हमारे सिटी काउंसिल जो भी आते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि आप लोगों के पास टाइम है या नहीं है। तो शौक से तो हम आ जाते हैं और इस पर वोट भी ले लेते हैं, मामा चाचा करके, ताया भतीजा करके, भाईजान करके, अंकल करके, तो वोट भी हमें मिल जाते हैं। तो शायद सब सिटी काउंसिल की होती ड्यूटी होती है, इसी तरह रीजन के मेंबर होते हैं, बड़ा बहुत बड़ा काम होता है, पढ़ा लिखा काम होता है, बाकी कमेटियों का भी काम होता है। तो शाह साहब, जब ये सारी चीज़ें पहले पता होती हैं, तो जब ये सारे लोग बन जाते हैं, तो फिर हमारे लोग जो है बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ भी 10 बंदे इकट्ठे कर, 2 बंदे इकट्ठे होते हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती है। तो शाह साहब, ये आने से पहले सोचना चाहिए या बाद में सोचना चाहिए?
1: जी, आपने एक बहुत ही रेलिवेंट और बहुत ही सख्त किस्म का सवाल किया है। ये बिल्कुल सही बात आपने की है कि पहले सवाल किया जाना चाहिए या बाद में। ये तो पहले सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो बंदा इस काबिल है कि वो एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसके जिसकी उसकी मादरी जबान जो है वो उसकी अपनी नहीं, उसकी सेकंड जबान है। हमें ये सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम जितने भी फॉरनर्स हैं, हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो डेनिश है। बेशक हम यहाँ स्कूलों में जाते हैं, बेशक हम डेनिश बोलते हैं, लेकिन असली तौर पे हमारी मदर टंग वही है जो हमारे माँ बाप की है, जो हम घरों में पढ़ते हैं, जिसको हम ज़हरी तौर पे हम कबूल करते हैं, वो हमारी असल जबान है, वो नंबर वन जबान होती है। तो ये जो दो जबानों वाला मसला है, इसको भी हल करने के लिए सियासतदानों को सामने आना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारे जो सियासतदान है वो ये नहीं समझ सके अभी तक कि जो आयन है, डेनमार्क का जो आयन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी तारीफ क्या है, उसके कानून क्या है, वो क्या कह रहा है। लेकिन जो कानून पार्लियामेंट बना रही है, तो हम यही समझते हैं कि ये आयन का हिस्सा है या आयन का एक जैली हिस्सा है। तो ये गलत चीज है। हम फौसले जब देते हैं, जब हम किसी चीज पर बात करते हैं, एग्जाम्पल आपने कोपेनहेगन की बात की, तो कोपेनहेगन एक बड़ी सबसे बड़ा हमारा दारुल खिलाफा है और यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्स भी हैं, सब कुछ है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ के जो कोपेनहेगन की जो कम्यून है, उसका फ्राइज जो है वो दूसरी कम्यूनों से बहुत बड़े हैं। वहां पे सबसे पहले जो काउंसलर आता है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो कौन से हल्के से किन लोगों ने उसको चुना है, उनकी क्लास क्या है, उनके अंदर कौन से लोग रह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या उनको हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, स्कूल्स की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, उनको पैसों की प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह, ये उसको रखना चाहिए। फिर उसकी एक फोर्स ले बनाकर अपनी पार्टी से, अपनी बॉल एस जो उसकी पार्टी का जिस हल्के से वो इलेक्ट हुआ है उनसे बात करके अपनी पार्टी में उसको मंजूर कराकर उसको ये चीजें आगे पेश करनी चाहिए, और उसके लिए दूसरी पार्टियों के लिए जो दूसरी पार्टियां वहां बैठी हुई हैं जो बिल्कुल उसकी मुखालफत करेगी कि ये कहां से ले आए इस किस्म की फौसले, तो उसको आयन को समझना चाहिए और वो आयन को बेस बनाकर उनको एक शट अप कॉल दे सकता है, उनको कह सकता है कि हमारा आयन क्या कह रहा है और आप क्या बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो अपने लोगों की प्रेजेंटेशन पेश करेगा, इस तरीके से उसके पांव मजबूत हो जाएंगे और वो अपनी बात जो है वो समझाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप तनकीद बनाए तनकीद करना शुरू कर गए, बहस पे ऊपर बहस करना शुरू कर देंगे, उस बहस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको समझा सकें, तो वो बिल्कुल होगी। अब आपने जैसे बात की टैक्सियों की पार्किंग की, तो कोपेनहेगन में सबसे बड़ी जो चीज है वो है वहां पे मेजोरिटी जो लोग रहते हैं वो है वर्कर, और उनमें ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, उनमें टैक्सी ड्राइवर भी हैं, बस ड्राइवर्स भी हैं, और बहुत सारे हैंड वर्कर जिनको हम कहते हैं मसलन हाथ से काम करने वाले मुस्लिम मजदूर और लोग हैं जो अपनी गाड़ियों में अपनी वाहनों में वो सफर करते हैं, उनके लिए पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, सड़कों की भी प्रॉब्लम है, उनके उनके काम करने के औकात में जब वो जाते हैं मुख्तलि वक्त में वो ट्रेवल करते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी होती है कि वो राइट टाइम पे जो है वो किसी अपने एक मकाम पर पहुंच के वहां काम शुरू कर सके, और अगर वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पे उनको पार्किंग मिलनी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीजें जो है, तो इसके लिए जो काउंसलर हजरात हैं उनको चाहिए कि ऐसे वर्कर्स जैसे पुराने वक्तों में होता था कि जो वर्कर जो ऐसे किस्म के जैसे वीवीएस वर्कर है जिसके लिए कि बहुत जरूरी है, आपका बाथरूम खराब हो जाता है, टॉयलेट खराब, कोई चीज ऐसी हो जाती है, वीवीएस को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, आपके कोई विंडो टूट गया शीशे वाले को बुलाते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल चिलैल से इजाजतनामा होना चाहिए ताकि वो जहां अपनी गाड़ी खड़ी करे, अगर वो गलत ऐसी जगह पे पार्क कर दी है जहां पे उसको जुर्माने का खतरा हो तो उसको जुर्माना ना लगाया जाए, क्योंकि वो एक काम करने के लिए आया है, एक मिशन पे आया है और वो अपना काम करके जा रहा है और लोगों को सहूलत देता है, तो गवर्नमेंट इन चीजों पर नहीं सोच रही। गवर्नमेंट ने जो है जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ एक ही रट लगा ली है, ख्वाह वो कम्यून हो या पार्लियामेंट, वो ये कहती है कि हमने यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है और इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा करनी है कि लोग मायूस हो जाएं, आपस में लड़ना शुरू कर दें।

0: मना किया। अब आपका जो सवाल है उसके सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोगों के पास जिनके पास इल्म है उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया जाता है, उनकी उनसे सवाल जवाब नहीं किए जाते। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मसाइल उठ खड़े होते हैं और ऐसे ऐसे मसाइल उठते हैं कि जिसका लोग जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप ये देखें कि ये इस जमाने में भी हमारे लोग जो हैं वो नौज़ुबिल्ला रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान तक के जो हैं वो सवाल जवाब का करते हैं, और ये इनको इसलिए करते हैं कि इनके पास बुनियादी तालीम नहीं है। सिर्फ कुरान को पढ़ लेना जो है अरबी में, उससे आपको समझ नहीं आती, आपको उसकी जो उर्दू जबान है या आपकी जो तुर्की जबान है, किसी भी जबान जो भी आपकी मादरी जबान है उसके अंदर आप उसको पढ़े तो आपके जो दिमाग है उसको वो हासिल कर लेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हर बंदा जो है वो हिफ्ज़े कुरान नहीं हो सकता, हर आदमी जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर से दूसरी चीजों में नहीं जा सकता। ये चंद एक पासियत लोग होते हैं जिनके पास ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास शैतानी इल्म होता है। आप ये देखिएगा कि शैतान के पास इतना ज्यादा इब्लीस के पास इल्म था कि वो सातवें आसमान पे गया था, अल्लाह ताला ने उसको सातवें आसमान पे बुलाया था। तो लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इब्लीस के पास इब्लीस ने कोई अपना इल्म बनाया था, उसके पास जो भी इल्म था वो अल्लाह ने ही उसको अता किया था, जैसा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया। तो हमें कुरान मजीद से इल्म लेके और सुनते रसूल पे चलते हुए हमें चलना चाहिए, ना कि हम दुनिया की लिखी हुई किताबों को हम पढ़ के तो उनकी कहानियों पे हम
1: देखें ना। जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ कोई इस्लामी कानून नहीं है, ये इनका अपना जो आइन है या इनका अपना निज़ाम है, उस जिसके बारे में उलमा ने और संजीदा लोगों ने कहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जहाँ आप रहते हैं उस कानून कायदे का एहतराम करें। तो शाह साहब यहाँ एक जमहूरी निज़ाम है, यहाँ जो नज़र आता है अगर हम उस पर भी तनकीद करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ को मना भी नहीं है तनकीद करना। लेकिन शाह साहब जमहूरी निज़ाम ही है ना, एक बना हुआ है कि एक के पास 9 वोटें होंगी, एक के पास 8 होंगी, 9 वाला जो है वो जीत जाएगा, चाहे जो कुछ भी हम मर्जी कहते रहें, जो 9 वाला वोट वाला वही जीतेगा। ये है जमहूरियत, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। तो शाह साहब देखें, साल साल से बरतानिया बहुत एडवांस है, बहुत पहले लोग वहाँ आए, यहाँ डेनमार्क में 70, 71, 69 में लोग आए, अब तीसरी चौथी नस्ल जो है वो चल रही है। तो शाह साहब अब निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, बंदे को खुद सीख जाना चाहिए। कल हमने देखा कि लोग कम कहते हैं कि डेमोस्ट्रेशन करना जमहूरी हक है, सियासी हक है, इजाज़त ली जाती है, डेमोस्ट्रेशन की जाती है। बरतानिया की एक खबर चल रही थी जिसमें सिर्फ मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि ये लोकल खबर बनती है, पाकिस्तानियों की खबर है, मुसलमानों की खबर है। तो शाह साहब इंग्लैंड जैसे जमहूरी मुल्क में रहते हुए अगर इजाज़त मिली है डेमोस्ट्रेशन करने की, कोई आदमी डेमोस्ट्रेशन कर रहा है उसकी क्लास कितनी होती है, कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले की सोच कितनी है, वो पैसे लेकर डेमोस्ट्रेशन कर रहा है या खुद जमहूरी निज़ाम के लिए हक लेने के लिए कर रहा है। तो कुछ शाह साहब एक सैयद साहब हैं पढ़े लिखे हैं जिनका तल्लक ओवरसीज से है, उसकी वीडियो जो है वो काफ़ी वीडियो पर जो वायरल है, एक बंदा है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो नापसंदीदा शख्सियत है बकौल लोगों के, दूसरी तरफ जो है एक पढ़े लिखे सैयद है जिनका तल्लक जो है ओवरसीज के साथ तल्लक है, और उनकी गालियों की पता नहीं वो असली वीडियो चल रही है या कि बनाई गई है गालियाँ वो दे रहे हैं। तो शाह साहब इन चीज़ों को जब हम बदला ही नहीं चाहते, हम गुलामी से निकला ही नहीं चाहते, 1400 साल पहले हमें गुलामी से आज़ाद कर दिया, हम सोसाइटियों के गुलाम, तंजीमों के गुलाम, सियासी जमातों के गुलाम, अब अपने मुल्क की हुकूमतों के गुलाम, जो हमें पोस्ट देता है हम उसके गुलाम। जी शाह साहब
0: कि आपने बिल्कुल सही बात की है कि हमें आज़ाद पैदा किया गया था रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अपने नबूवत का, अपनी नबूवत का नहीं रसालत का, नबी तो वो पदाइशी थे, रसालत का आपने ऐलान किया 40 साल की उम्र के कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी भी और रसूल भी हूँ। और रसूल वो होते हैं जो जो जो किताब लेके आते हैं और अल्लाह की किताब, और आपने आखिरत का, तो आपने सबसे पहले दो चीजें खत्म की थी, एक लौंडी खत्म की थी और एक गुलाम खत्म किया था। और आपने सबसे पहले, आपको पता है कि जो हमारे हबशी ने जिन्होंने अजान दी थी मुझे रस्ता फारस भी उनका नाम जहन से एकदम निकल गया। तो उन्होंने ये चीजें जो है अल्लाह के रसूल ने उनको अपने पास से पैसे देकर आजाद कराया था। तो ये कहना कि जी इस्लाम है जी वो बाद में शराबें हराम हुई और बाद में गुलाम जो है वो आस्ता आस्ता लोगों को इस तरफ मोटिव किया गया और ये चीजें बाद में खत्म हुई, ये जहालत की सबसे बड़ी और ये दुश्मन के साथ मिलावट करने की और मिल जाने की सबसे बड़े सबूत है जिसके अंदर इन्होंने हर एक चीज वो की जो सिर्फ हम कलमा पढ़ के बाकी हर वो काम कर रहे हैं जो कुरान मजीद के अल्लाह की दी हुई किताब जो हमारा ईमान होना चाहिए हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। आपने अभी बात की, मैं एक मुख्तसर ये चीज बताता हूँ। आपने कहा कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड बड़ा मॉडर्न था 1942-43 की वॉर के बाद ये बिल्कुल खत्म हो गया था, डिमोलिश हो गया था। इसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि इनको लोगों की जरूरत थी, इनकी औरतें बहुत ज्यादा हो गई थी, फाहिशी बढ़ चुकी थी, मर्द बहुत कम थे, जंग में मारे जा चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस वक्त के हिंदुस्तान से इन्होंने शिप भर भर के, आप अभी भी लाइब्रेरी में जाके इनकी खबरें निकाल सकते हैं कि इंग्लैंड में जब वो जहाजों से उतरते थे ख्वा उनको पंजाबी आती थी, सिंधी आती थी, जो भी जबान आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, उनको गोरिये पकड़ पकड़ के वेलकम कर रहे थे। तो इनके घरों को इनको बनाया गया, इनके मुल्क को जो है वो तहफ्फुज़ दिया गया। और आज इन्होंने उन्हीं लोगों को लेके तो हमारे मुल्क को जो है इसको गुलाम बना दिया है। अब यह हमारा मुल्क ही वो मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा दीन जो है फिरकों में बटे हुए हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, सऊदीया में चले जाएं, इराक में चले जाएं, ईरान में चले जाएं, कतर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको 3-4 फिरके नजर आएंगे। पाकिस्तान वाइल्ड एक ऐसा मुल्क है और इंडिया जहां सबसे ज्यादा फिरके जो हैं वो मुसलमानों में पाए जाते हैं और ऐसे ऐसे फिरके हैं कि जो एक मस्जिद में भी पूरी नहीं कर सकते। तो मस्जिद के साथ ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। अंग्रेज
1: चीजें डेनमार्क में भी हैं,
0: अब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बिल्कुल यही सिलसिला यहाँ चल रहा है। यहाँ पे ये जब हम इन लोगों ने हमें लाए थे तो उस वक्त सबसे बेस्ट नेशन जो थी इनके हिसाब से वो मुसलमान थी, क्योंकि 57-58 में यहाँ इन्होंने यहूदियों को इसराइलियों को आबाद करने की कोशिश की थी दूसरे ममालिक से। तो उन्होंने यहाँ पे वही करप्शन के और दूसरे हालात पैदा कर दिए। यहाँ पे हर चीज वगैरह हर एक चीज इनके मुल्क के आईन के खिलाफ चलनी शुरू होगी।
1: तो फिर इन्होंने क्या किया, बार बार हम जिक्र भी करते रहते हैं शाह साहब, हम सारी चीज आपको हमें या दूसरों सबको पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, गीबत करनी गुनाह है। तो शाह साहब ये इल्ज़ाम हम क्यों नहीं देते कि हमें ट्रंप ने कहा कि गीबत किया करो या नतन्याहू ने कहा कि, बाकी सारी चीजें हम उठा के उनकी तरफ फेंक देते हैं।
0: इसलिए कि जो जब हम हराम खाते हैं तो हमारे पास इल्म नहीं होता तो फिर हम मुताज हो जाते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, दूसरे की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम चले जाते हैं। आप ये देखिए कि आप ये देख रहे हैं, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें, जब आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे कितने मुकर्ररीन आते हैं, कितने बड़े बड़े लीडर आते हैं, क्या उनसे कोई ऐसी बात जो है कोई ऐसी बात निकलती है जो कि लोगों के लिए फायदेमंद हो आगे चले? नहीं, वो वही बात करते हैं जो इन्होंने उनके खिलाफ लिखी हुई किताबों की हो या उनके बारे में या सुनी सुनाई बात करके करते हैं। डेनमार्क के अंदर जो आइन है, अभी तक जो आइन है ये वो आइन है जिसके अंदर इन्होंने 1952 में थोड़ी सी जो है तब्दीली की थी, लेकिन उसके पहले जो आइन है वो उमर लॉ कराता और ये अब तक उसको उमर लॉ कहते हैं। ये मुसलमानों का है, यहाँ पे औरत से लेके बच्चे के पैदा होने से लेके हर जिम्मेवारी जो है वो गवर्नमेंट की है और यही जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कानून था और ये इस्लाम का कानून था कि जो स्टेट में रहता होगा, जो हमारे मुल्कों में रहता होगा, उसको गवर्नमेंट जो है वो सारी सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट के खजाने जो है मालूम उसके अंदर से पैसा दिया जाएगा। इसीलिए तो बड़ी बड़ी सल्तनत जो थी रोम में,
1: क्या बात कर रहे हैं
0: जी, हर चीज जो है ये सोशल सिस्टम है ही इस्लाम का लाया हुआ, ये बिल्कुल गौरव का नहीं ना इनका है। इन्होंने बेशक इनसे डिबेट करके देख लें इनसे आपको आखिर ये मानेंगे कि हाँ हमने जो मेडिकल है, हॉस्पिटलाइजेशन है, दूसरी चीजें, ये सब हमने इस्लाम से सीखी हैं। क्योंकि देखे आपके कुरान के अंदर हर चीज वो है जो ना पहले थी और ना अब है, अब हर चीज उसके अंदर डिस्कवर है। हजरत आदम से पहले क्या था, हजरत आदम के बाद क्या हुआ, दुनिया कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई, नस्लें कितनी दफा तबाह बर्बाद हुई। अब जो बंदे ये कहते हैं जी कि हम सब आदम की औलाद है, ये कुरान को नौजबिल्ला कुरान मजीद को जुटलाते हैं। अफ्रीका में जो कौमें बात हुई, मुख्तलिफ ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब मुख्तलिफ किस्म, चाइना, ये मुख्तलिफ किस्म की कौमें जो है ये अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ने कहा हो जाओ तो हो गई। तो अब ये चीजें हैं जो ये बैठ के उलमा दीन जो जो कुरान को
1: ये
0: समझते
1: तो सारी
0: हैं।
1: इल्मी गुफ्तगू है इस पे, तो जिसके पास स्टडी होगी वही इन चीजों की बात को समझेगा या जवाब देगा। तो शाह साहब हमारे पास अभी 5 मिनट 2 मिनट रहते हैं कि ये जो आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन या कम्यून के इलेक्शन, ये तो एक चीज इस्टेब्लिश होगी कि हमारा सारा निज़ाम जो है वो कोपेनहेगन कम्यून में, एल्बर्ट कम्यून या जितनी भी डेनमार्क में कम्यून है वहाँ पड़ा हुआ है। तो जब शाह साहब हम खुद ही इनसे फ़ायदा सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से उठाना नहीं चाहते, हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? शाह साहब हम सिर्फ गिला करने के लिए इस मुल्क में आए हैं?
0: नहीं, आपने सही बात की। इस वक्त तो हमारे दो पाकिस्तानी जो हैं वो मलिक सिकंदर और काशिफ अहमद जो हैं, ये बेशक डेनमार्क में पैदा हुए हैं लेकिन इनके जो रूट्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, और इनको चाहिए कि जो हमारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो इस वक्त मेजर प्रॉब्लम्स हैं,
1: अपने तरीके से काम कर रहे हैं जो खबरें मिलती रहती हैं।
0: जी वो मैं भी उनको सुनता रहता हूँ, लेकिन बात असल में ये है कि उनको वो चीजें हाईलाइट करनी चाहिए जिनमें डेंचों को भी तकलीफ है और फॉरनर्स को भी तकलीफ है। ये इनको ये नरमी थोड़ी सी पैदा करनी चाहिए। अभी आप आज की बीटी खोल के देख लें तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 34% जो है, 34% जो है जितने भी यहाँ पे मर्डर्स अटेम्प्ट होते हैं कत्ल के, वो उसके अंदर फॉरनर्स शामिल है। अच्छा 34, और आप ये कह लें 35 कह लें, तो जो बाकी 65% है वो तो खुद यूरोपियन पीपल है या डेनिश है। तो इनको इतना बड़ा फसाद करना और इतना शोर गोल करना कि ये जी मुसलमान है, मुसलमान इतना कर रहे हैं, अब ये खुद मान रहे हैं कि 65% जो लोग हैं ये इनके अपने हैं, और उनके ऊपर ये बात करें। इन्होंने यूक्रेन से बंदे यहाँ लाए, 66,000 से जायद जो यंगस्टर यहाँ पे आए हैं वो क्या कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, उनमें से मेजोरिटी जो है वो पुलिस ने उनको रिपोर्ट किया।
1: एक बात आपसे सवाल करते हैं, आपने जिक्र कर दिया, तो जो यूक्रेन के शहरी आए हैं यहाँ कर आबाद हुए हैं, तो इससे हमें क्या नुकसान हुआ, हमें क्या फायदा हुआ, डेनमार्क को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ?
0: देखिए जी, जब क्राइम रेट बढ़ता है तो उसके अंदर फिर फॉरनर फॉरनर ही होता है, वो आपको ये नहीं देखते कि आपके पास डेनिश नेशनल है या आप कौन है या क्या आपका रंग क्या है या कौन सा मजहब है, आप कहाँ से आए हैं। उसके अंदर आप सबको एक ही वो गेहूं की जो चक्की में गेहूं पेसते हैं, उसके अंदर वो जो चीजें शामिल होती हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन कौन पिस रहा है। तो ये चीजें जब बनती हैं तो फिर इसके अंदर कानून को सख्त करने के लिए जब वो फौसले लेके आती है मुख्तलिफ पार्टी, तो उसके साथ हम सब पिसते हैं, जो हमारे अच्छे से अच्छे बच्चे हैं, जैसे माशाल्लाह आपके बेटे डॉक्टर्स वगैरह, बड़े बड़े लोग, लोगों के बच्चे जो पढ़े लिखे बड़े बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं, आम आदमी को तो नहीं पता ये क्या काम कर रहा है, जब उसकी शक्ल देखेगा कहेगा ये भी एक क्रिमिनल है दूसरों की तरह। तो ये चीजें जो है हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे इंग्लैंड के अंदर है या फ्रांस के अंदर है या अपने जर्मनी के अंदर है कि जिस बंदे ने क्राइम किया है सिर्फ उसका नाम, उसकी शक्ल दिखाई जाए, ना कि पूरी नेशन को जो है वो बदनाम किया जाए। तो ये फौसले जो है हमें चाहिए कि हमें अपने काउंसलर्स को कहना चाहिए कि ये कोपेनहेगन में इसका बिल पेश करें और इनको कहा जाए कि जो बंदा जाती तौर पे क्रिमिनल है उसके ऊपर उसको बनाया जाए, ना कि उसके पूरे खानदान को और पूरे माशरे को इससे रिलेटेड किया जाए। और ये डेनिश आइन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, डेनिश आइन कह रहा है कि इसके इसके इसकी वजह से
1: आप बिल्कुल क्लोजिंग के पास हैं। शाह साहब जरा आपकी तरफ सवाल को मैं लेकर चलता हूँ। आप जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरों को हकूक लेके देने की बात करते हैं, लेकर जो इसके लिए फाइट भी करते हैं, इसके लिए डिबेट में भी जाते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं, कम्यून में भी जाते हैं, लोकल तंजीमात में भी जाते हैं। तो शाह साहब, आप एक जमात के बानियों में आपका शुमार होता है, आप अपना हक नहीं ले सके। इसी तरह एक बंदा 28 साल या 20 साल एक पार्टी का सदर रहा, वो अपना हकूक नहीं ले सकता। तो ना जमहूरियत की आप बात करते हैं, तो ना हकूक की बात करते हैं, दोनों चीज़ें तो आप ये खुद नहीं ले सके।
0: देखिए जी, मैं आपको एक सीधी बात करता हूँ, ये जो मैं रेडियो पे आपको टाइम देता हूँ, मैं ये आपकी वजह से देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि आए मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें, टैक्सियों के बारे में पूछे, कानून के बारे में पूछे, आइन के बारे में पूछे, तो मैं आपको सवाल देता हूँ, मैं उसकी तैयारी भी कर लेता हूँ। जिसकी चीज का मुझे पता नहीं, मैं कंप्यूटर खोल कर मैं उसकी तैयारी उसी वक्त कर लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ उसको, डेनिश में भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ अपनी उर्दू जबान में, मैं उसमें भी फिर वो। तो राजा साहब, ये चीजें जो हैं, इससे आपका जो शक और शुबा होता है वो दूर हो जाता है। तो मैं जो जो अपनी चेयरमैनशिप है वो मैंने खुद इसलिए छोड़ा है कि जहां पे अगर कोई यंगस्टर को, लोग कहते हैं जी हमारे यंगस्टर्स आएंगे तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये उसी जमहूरियत का मैं हिस्सा हूँ कि जो 70 से लेके 90 तक और मिडल ऑफ 90s तक जो था, यहाँ का माहौल बड़ा अमन पसंद था, तो वो उन्हीं बुजुर्गों के, मेरे साथियों की वजह से था, मेरे कुलीगों की वजह से था। तो अब जो यंगस्टर्स आए हैं, जो यंगस्टर्स ने मैदान यहाँ पे खड़ा किया है, जो कार रेसिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे बुरे बुरे फ्रॉड कर रहे हैं टैक्स के साथ भी, और दूसरों का और रोजाना अखबारों में आया होता है, तो ये हमारे वक्तों में नहीं था। ये चीज चंद एक थे लेकिन वो उनको रिपोर्ट कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता था। लेकिन अब जो जो है सब्जेक्ट ये बढ़ चुका है, तो इसके अंदर अगर किसी ने रिस्पेक्ट करनी होती तो वो मेरी रिस्पेक्ट करते कि भाई ये इतना अरसा से इस कर रहा है, इससे कोई आवाज नहीं उठाई। और जमहूरियत इसी का हिस्सा है कि अगर कोई ग्रुप आप में पैदा हो जाता है, तो आप देखे कि जब इमाम हसन के लिए ये सामने आया, नौजबिल्ला मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया कि भाई अब मुसलमानों ने, एक फिरके ने जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई है, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे खिलाफत से छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ, आप खलीफा बन जाए, तो जब आप छोड़ेंगे तो खिलाफत फिर मेरे पास आ जाएगी, तो उस मुआहदे को भी कैंसिल कर दिया गया। तो यही अब चीज है कि मैंने उनको कहा कि ठीक है आपने एक ग्रुप बना लिया तो आप इस ग्रुप को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको भी उनको भी चाहिए कि दूसरों को, मुझे नहीं हर ग्रुप को ये चाहिए कि जो उनके पुराने हैं, जो उनके साथ लॉयल रहे हैं, जिन्होंने असल में ये ग्रुप का क्रिएट किया है, जैसे आप कम्युनिटी के चेयरमैन है, आपको शील्ड दी गई है, खुशी का मौका है, इसी तरीके से दूसरे लोगों को भी चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं पैदा करना चाहिए कि जिस वक्त अल्लाह को मंजूर हुआ तो सबको दूसरों को भी मिल जाएंगे, हर चीज हो जाएगी। जब आप आवाम में पॉपुलर होते हैं तो फिर खुद ब खुद अम्बेसी को ये पता लग जाता है कि इस बंदे के पांव कहाँ पे और कहाँ ये पॉपुलर है। तो राजा साहब, मैं तो यही कहूंगा कि जमहूरियत वो करता है, देखिए आप जमहूरियत का हिस्सा हैं, आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते, कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि आपके रेडियो की आवाज जो है, आपकी आवाज जो है ये सारी दुनिया सुनती है, एक कनाडा से लेके न्यूजीलैंड तक लोग इसको इंटरनेट पर सुनते हैं, लोग हर जगह, पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, जो सुनने वाला है, इवन आपके कुछ कुलीग थे जो डॉक्टर थे रशिया में और दूसरी जगह पे, वो भी आपके साथ हम कलाम भी हमारे साथ रेडियो पे होते थे, वो भी सुनते थे और सुनते हैं लोग। तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत ये नहीं कि आप चंद एक अपने लोगों को ले लें और उन्हीं को बस बड़ा बनाकर हर चीज आगे रख दें, बेशक उनको किसी बात का इल्म हो या ना हो, वो जमहूरियत ही, वो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत यही है कि आप अवाम के साथ,
1: इससे फिर साबित हो गया कभी हम आजाद नहीं है।
0: देखिए हम आजाद जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वही चाहते हैं कि हम आजाद ना हो और हम गुलामों की जिंदगी गुजारे। लेकिन वो जैसे वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, तो इंसान को उसको उस पर भी अमल
1: तो
0: करना
1: शाह
0: चाहिए।
1: साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, काफी लंबा टाइम शाह साहब आपने दिया, आपका कीमती टाइम होता है, लोगों ने आपसे दम दरूद भी कराना होता है मुफ्त में, जा से पता है शाह साहब ये दुआ भी मुफ्त में मिले ना तो वो लोग फिर लाइनों में लग जाते हैं।
0: ये देखिए सब कुछ अल्लाह देने वाला है, सिर्फ आपकी नीयत सही हो तो अल्लाह ताला हर चीज पे आपको कामयाब करता है। तो मेरी सबके लिए ये दुआ है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि मिलाद के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है, कुरान मजीद को पढ़े, अपनी जबान में पढ़े, समझे, गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन लगा लें, पढ़े नमाज, अगर आप एक वक्त नहीं पढ़ सकते तो उसको मजबूरी वक्त है तो आप उनको इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करके घर जाके पढ़ लें, मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाके पढ़ लें, लेकिन फसाद पैदा ना करें, गबियत ना करें, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ी सजा जो है वो तीन चीजों की है, एक तलाक, एक गबियत करने वाली और एक किसी का कत्ल करना। तो लिहाजा इन चीजों से जो है हमें परहेज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो आप दिल में किसी को कत्ल करने का सोच रहे हैं तो उसकी भी वही सजा है, क्योंकि आपकी नीयत को अल्लाह ताला बेहतर तरीके से समझता है। ठीक है राजा साहब,
1: आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। सामाइन नाज़रीन ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जिनको आप सुन रहे थे। सामने नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी साहब कोई भी हमारा लिसनर बात करना चाहता है जवाब देना चाहता है उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: सामने कराम FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: मुजीब साहब ये बातचीत किया कि भाई इसकी तरदीद होनी चाहिए, अगर खबर सही नहीं है तो इसको स्टॉप किया जाए, बल्कि उसका तरदीद की जाए कि ये भी खबर नहीं है, अगर होगी तो जरूर बताई जाएगी।
1: हाँ लेकिन
0: जी
1: हमें खुशी होगी जी, अगर अगर ये
2: नहीं
1: खबर
2: जी,
1: होगी तो हमें
2: पाकिस्तान
1: खुशी
2: के
1: होगी
2: अगर
1: इसको
2: सदरे
1: लगाकर।
2: मुमलिकात बाहर गए हुए हैं तो उनका पता नहीं है वो कहाँ छुट्टियां गुजार रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, सरकारी
1: नहीं
2: दौरे
1: नहीं
2: पे
1: वो
2: हैं या
1: भी
2: सरकारी सिस्टम
1: वो
2: इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: नहीं नहीं वो सरकारी नहीं, वो एक निजी दौरे पे हैं, वो मेरा ख्याल है दो दो तीन दिन में वापस आ जाएंगे, वो मेरा ख्याल है इस वक्त से वियना में, शायद शायद वो वियना आने
0: लेकिन
1: वाला है।
0: सदर साहब जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुमकिन है, अभी फाइनल नहीं है, कि चंद घंटों के लिए वो आपके शहर में भी आए,
1: जी अगर आए तो बिस्मिल्लाह जी वेलकम करेंगे
0: तो
1: उनको।
0: यदि कि इन टच रहना। मैंने भी उन बंदों से कि अगर कोई ऐसी चीज है तो हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि आप उनके आने की तैयारी भी कर सके।
1: बिल्कुल जनाब, अगर हमें
2: जी जी
1: 4 घंटे
2: अगर
1: हमें
2: हमारे शहर में
1: उनको,
2: आते हैं तो PIA लेकर आए।
1: हाँ नहीं नहीं वैसे भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, PIA तो बहुत सारे नहीं लेके आए जिन्होंने गुम की है, जिन्होंने हमारे से
2: नहीं ये
1: छीनी
2: तो
1: है,
2: खाते
1: अब
2: आपके
1: हम तो
2: खाते में जाती है ना।
1: नहीं नहीं इंशाल्लाह
0: नहीं
1: हम ही
0: जी,
1: लेके
0: हम
1: आएंगे इंशाल्लाह,
2: सियासी तो आप
1: इंशाल्लाह
2: कैश
1: देख
2: करा रहते हैं, कराते हैं, और होनी भी चाहिए, आपका हक बनता है सियासी।
1: नहीं हम PIA भी लेके आएंगे, हम नादरा का बंदा भी लेके आएंगे,
0: तो
1: सब
0: एड
1: इसलिए हम
0: ब्लू भी
1: कम्युनिटी
0: लाएंगे।
1: के लिए पर, हम कम्युनिटी के लिए हर वक्त खड़े हैं, हम कम्युनिटी के लिए हमेशा काम करेंगे और करते रहे।
0: इंशाल्लाह
2: तो मुजीब साहब आते हैं, ये इलेक्शन तो बड़े जल्दी आ जाएंगे, और आपके मुकाबले में भी जो इलेक्शन जो आ गए, आप SF में गए हैं, हमारा नौजवान बच्चा जो है वो रेडिकेल में चला गया, तो हमारी तो और आपकी वोटें जो दूसरे तरीके तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। इलेक्शन जब शक जहाँ से मर्जी बंदा लड़े, लेकिन बंदा अपनी पार्टी की तरफ ही जोर लगाता है। तो
1: देखे ना रेडिकेल वेंसा में करवाए हैं हमारे बुरखुरदार, तो वो कोपनहेगन से नहीं है, वो बादशाह से उनकी क्रिस दूसरी है, उनका एरिया दूसरा है, वो वहां से इलेक्शन लड़े, और यहाँ से भी जो
2: ये
1: कोपनहेगन में
2: पाकिस्तानी
1: बच्चे हमारे
2: सिस्टम ना
1: इलेक्शन लड़े।
2: करेंगे, रेडिकेल का बंदा सोशल डेमोक्रेट को वोट दे, इस रेडिकेल का बंदा SF को वोट दे, तो आप तो डेमोक्रेट आदमी हैं।
0: राजा
2: ये
0: साहब
2: बात
0: बहरहाल बात यह है, तो अब तो ये खुद कैंडिडेट है हमारे मुजीब साहब, सदर साहब,
2: वही
0: ये
2: तो
0: खुद
2: कह रहे हैं कि
0: इलेक्शन लड़ रहे
2: SF
0: अपनी
2: किधर थी,
0: पार्टी की
2: रेडिकेल
0: तरफ से।
2: किधर।
0: जी हेलो
2: सदर
0: हाँ
2: साहब
0: आपकी
2: की
0: बात
2: सेहत
0: दुरुस्त
2: ठीक
1: है।
2: है?
1: नहीं मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असल बात यह है कि इलेक्शन अभी तक देखे, मैं SF में चला गया हूँ, और इंशाल्लाह SF की हम सपोर्ट करेंगे, और जो भी कोपेनहेगन में SF के लोग खड़े होंगे फुली सपोर्ट करेंगे, और इसमें जो भी खड़े हों हमारे अपने बंदे खड़े हों, अगर डैनिश खड़े हों, जिस जमात में बंदा जाता है उस जमात के साथ को बंदे को चलना पड़ता है। अभी मेरे पास पूरा शेड्यूल आया हुआ है, आज के दिन की इनविटेशन थी मेरी 12 से 4 बजे तक, 6 तारीख की इनविटेशन है, फिर ऐसे ही अगले सितंबर है, फिर आगे मेरी वो फोरमैन के साथ जो स्टोर क्रिस में होता है, मैं आपको रास्ता भेजूंगा पूरी लिस्ट, उसमें उन्होंने बुलाया हुआ है, मतलब सारी जगह स्टूल से मिले हैं उसमें बुलाया हुआ है। हम अपनी पार्टी के अंदर रह के काम करेंगे, और अपनी पार्टी के अंदर रह के अपने बंदों को जिताएंगे, और इसके मुकाबले में फिर जो मर्जी आ जाए
2: बंदों को
1: हमारा, जो
2: जिताएंगे, इसका
1: मर्जी
2: मतलब है
1: आप
2: आप
1: इससे
2: इलेक्शन ही
1: उम्मीद हो
2: लड़ेंगे।
1: जी।
2: हमें
1: मैं
0: नहीं
1: अभी
0: जी,
1: कुछ नहीं कह रहा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा,
0: नहीं
1: अभी
0: नहीं नहीं
1: देखेंगे।
0: इनके, मैं राजा साहब ये आपको खबर दे रहा हूँ, इनके पूरे इरादे हैं और ये इसके लिए अपना राह हमवार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जब ये कह रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो कम्यून का इलेक्शन लड़ना है, पार्लियामेंट का तो लड़ना नहीं, और हमारे सदर साहब जो है वो अपना सोशल डेमोक्रेट की बात करते हैं, तो ये तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा,
1: नहीं
0: क्योंकि
1: नहीं
0: जिस
1: देखें
0: पार्टी
1: ये तो अपनी अपनी पार्टी की बात रहा है, अगर साहब मैं आपके बेटे का इंतजाम करता हूँ, अगर वो जिस पार्टी में अभी वो है उस पार्टी को तो मैंने सपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि मेरी SF पार्टी है, मैंने अपनी पार्टी को सपोर्ट करनी है, तो ये तो आपको बात, आप तो माशाल्लाह सियासतदान
0: नहीं
1: है, आपको तो पता
0: नहीं
1: होना चाहिए
0: बिल्कुल, मैं इस
1: कि
0: बात
1: जिस
0: को
1: पार्टी के
0: समझता
1: अंदर
0: हूँ,
1: बंदा होता है
0: लेकिन
1: उसको
0: हमें
1: सपोर्ट
0: बहुत
1: करता है।
0: लॉस होगा आपके जाने से।
1: अब देखें ना जी, फिर हमने पूरी कोशिश की
0: देखे
1: लास्ट
0: मुजीब
1: इलेक्शन
0: साहब,
1: में,
0: बात यह है कि ये जो पार्टी बनी थी इसमें तीन चार अहम रुकन थे, उसमें आप भी एक पिलर थे, शाह साहब थे, अपना सिकंदर था, और जो दो साथी थे, लेकिन एक परवान चढ़ाई पार्टी, और इन लोगों की तो अक्कात बन गई कि ये एक पार्टी हमारी अपनी पार्टी बन रही है, अपनी कम्युनिटी की पार्टी बन रही है। आप बहरहाल यानी कि वहां
1: देखें जी इसमें
0: जी
1: आप ना सबसे बड़े जो पिलर थे ना ये लास्ट इलेक्शन में, वो मोहतरम राजा कफूर अफजल साहब थे, एक तो ये
2: नहीं,
1: कम्युनिटी
2: देखिए जी
1: फोरम के
2: मैं तो
1: चेयरमैन है, सुने
2: इन्फॉर्मेशन
1: ना
2: के
1: जी,
2: लिहाज से
1: सुने
2: आप कह
1: सुने
2: सकते
1: सुने
2: हैं, लेकिन
1: नहीं नहीं
2: देखिन
1: सुने
2: आगा साहब
1: ना
2: वहीं पे
1: सुने
2: खड़े हैं,
1: सुने
2: आप
1: ना
2: दी
1: सुने
2: रिकॉर्ड जो
1: सुने
2: इन्फॉर्मेशन
1: नहीं
2: है, शाह
1: सुने
2: साहब भी
1: सुने
2: वहीं खड़े हैं, तो
1: सुने
2: अगर ये एक पिलर
1: नहीं
2: गिरा है तो वे
1: सुने
2: तो मुजीब साहब गिरे हैं।
1: नहीं सुने ना,
0: यार
1: मैं गिरा
0: बात
1: नहीं,
0: तो
1: मेरे
0: यही
1: मेरे
0: है,
1: मेरी बात सुने, राजा कपूर अफजल साहब जो कम्युनिटी फोरमैन के चेयरमैन है, वो एक बहुत बड़े पिलर थे। फिर इनके पास

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहसस समीने क्राम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। जब बच्चे वापस स्कूल में आते हैं तो हर कोई बच्चा अपनी छुट्टियों के बारे में बताता है कि क्या किया, कहाँ के, कैसा रहा। तो बहुत लोगों ने यही जवाब दिया कि हम दूसरे मुल्क घूमने के बाहर डेनमार्क में ही घूमे। कहते हैं कि मौसम भी अच्छे हैं, मौसम छुट्टियों में वाकई बहुत अच्छा था, इतनी ठंड नहीं थी, गर्मी थी, अच्छी वाली गर्मी जिसे कहते हैं। मैंने भी इन छुट्टियों को बहुत इंजॉय किया, पार्क घूमने फिरने के, मौसम भी इंजॉय किया, पार्क स्वीडन हर जगह हम गए, बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये छुट्टियाँ बहुत पसंद आई। अगर आपको कुछ कहना है तो आपकी आवाज़ के पास आपके लिए हमेशा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर बराए रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। 4 बज चुके हैं या डेनमार्क के, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है 7:02 हुआ चाहते हैं। 26/8/2026 का प्रोग्राम है। सामिन, हमारा काम है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना, जो भी हमारे मौजूद मेहमान आते हैं उनके साथ आपका राबता हो जाए, आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो इस वक्त डेनमार्क का मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन 22 के करीब जो है वो टेम्परेचर भी है, बड़ा प्यारा टेम्परेचर है। पाकिस्तान में डेफिनेट गर्मी होती है, लाहौर के मौसम में भी बहुत गर्मी होगी, डेफिनेट होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि आज के दिन बारिशों का मौसम है। तो समझ नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी मौजूद मेहमान है जिनका ख़ुद भी मीडिया से ताल्लुक़ है, वो बहुत सारे स्टेशन के साथ काम भी करती हैं, अपने प्रोग्राम भी बनाती हैं, और एक पार्टी की जो है वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो इस वक्त लाहौर की फ़िज़ाओं से रिफत साजद जो है हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी, थैंक यू सो मच राजा साहब, मेरी तरफ से आप सबको और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम।
2: वालेकुम सलाम रिफत। मैंने प्रोग्राम शुरू किया है तो यहाँ डेनमार्क में जब हमारे मेहमान हमारे करीब आते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना तारफ़ खुद करा दें, आप क्या करते रहे, करती रही या कहाँ काम कर रही हैं, किस पार्टी से आपका तल्लुक है। दिस इज़ अप टू यू, जो आप कहना चाहें कहें, फिर आपसे सवाल जो आप करेंगे।
3: जी थैंक यू। जी ऐसा है कि मेरा नाम रिफत साजिद है, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोबा खवातीन काफ से जिला लाहौर की जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा UAE में ह्यूमन राइट्स की वाइस चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ मुंसलिक हूँ, और शोर न्यूज की ब्यूरो चीफ भी हूँ, और किसी की प्रेसिडेंट हूँ, किसी की मुस्लिम फजला में और लाहौर में, ऐसे ही है। और माशाल्लाह से मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ अपने सारे सामाइन से बात करने का मुझे मौका दिया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ।
2: रिफत, बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बिल्कुल जिस तरह एक न्यूज़ रीडर की आवाज़ होती है, अल्लाह ताला ने आपको ये खूबी दी हुई आवाज़ में, जो है कहते हैं माइक पे पता चलती है आवाज़ का कि आवाज़ कैसी है। तो आपने मुस्लिम लीग काफ शोबा ख्वातीन के साथ भी काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स का भी काम करती हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा अपना पार्टी का तारफ़ तो कराएँ।
3: जी, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी कि कायदे आजम की जमात। ये कायदे आजम की जमात जो अपना तारफ एक तो खुद भी है, कायदे आजम के साथ मुंसलिक है, इसके साथ साथ जैसे हमारे लीडरान बदलते जाते हैं आगे बढ़ते हैं सिलसिला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी जहर अली शहीद की बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स और कुर्बानियां हैं जिससे ये कायम और दायम है अभी तक। और मैं चाहूंगी कि इस पार्टी को हमारे कायदीन चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी सालक हुसैन साहब और चौधरी शाफी हुसैन साहब, ये दोनों भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादा हैं, और माशाल्लाह बड़े एहसन तरीके से अपनी पार्टी की जमहूरियत की अलमबरदार पार्टी है और इसको लेके चल रहे हैं। और हम लोग जो अहदेदारान हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी अहदेदारान हैं, हमारी मरकजी प्रेसिडेंट मैडम फारूक खान साहबा हैं जो कि MNA भी हैं, इसी तरह हम लोग बाहमी इत्तफाक से अपने शोबा को और हर विंग्स को लेके पार्टी चल रही है, जिसका सारा क्रेडिट हमारे कायदीन को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ही बात सिखाई है कि कभी भी कोई आपने पाकिस्तानी होने के नाते और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम की जमात है, कोई गैर कानूनी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि नदामत को, पार्टी कायदीन को या पार्टी को।

0: और मैं चाहूंगी कि मैं अपने सारे जितने हमारे अहदेदारान हैं, गायब गए हमारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं सुन्नी हाउस में अहदेदारान के, वहाँ हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि जो हमें बात कही गई है बुनियादी उस असूल से हमने नहीं हटना और आगे बढ़ना है हर जिद्दत के साथ अपनी पार्टी के और अवाम की फलाह बहबूद के लिए। जी
1: रिफत, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि चौधरी सालिक साहब चूंकि हमारे ओवरसीज़ के मिनिस्टर भी हैं, वो भी तशरीफ़ लाएंगे, जल्दी डेनमार्क तशरीफ़ आएंगे, एक वफद के साथ आएंगे। चौधरी शाफे साहब को भी जब टाइम हुआ वो भी तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन यहाँ डेनमार्क से हमारे मिर्ज़ा अज़र बेग साहब जो है पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं इस वक्त, तो वो भी यहाँ से पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वो किन हालों में? ठीक है, अपना यहाँ तो उनका बड़ा नाम था, बड़ा उन्होंने काम किया।
0: जी राजा साहब, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे जो ये अजहर बेग साहब है, मिर्जा अजहर बेग साहब, जो कि बहुत नुमाया हसीियत रखते हैं, चौधरी सालक हुसैन साहब जो कि ओवरसीज की मिनिस्ट्री है उनके पास, और चौधरी शाफी हुसैन साहब उनके पास की दो मिनिस्ट्री है पंजाब की, वजारत सनअत तजारत और महकमा औकाफ की। लेकिन बात है कि जैसे अभी आपने फरमाया, जब से डेनमार्क में भी और बहुत सारी जगहों पर जैसे मिर्जा अजहर बेग साहब बहुत अच्छी तंजीमी सरगर्मियां पाकिस्तान मुस्लिम काफ के लिए कर रहे हैं, उनमें डेनमार्क की मैं बात करूंगी कि वहां के चेयरमैन मुस्लिम लीग काफ के डेनमार्क में जो है चौधरी साजिद हनीफ साहब और राजा फरहाद कोहकन सदर डेनमार्क हैं, जनरल सेक्रेटरी सैयद अमीर मुख्तार हुसैन साहब हैं, और इनके बारे में जैसी भी इनकी वहां तंजीमी सरगर्मियां हैं क्यादत ये मिर्जा अजहर बेग साहब की, और वहाँ बहुत अच्छा काम जब यहाँ आके सालिक साहब, चौधरी सालिक साहब और चौधरी शाफे हुसैन साहब को वहाँ की तफसीलात बताई जाती हैं, और यहाँ काफी हमारी मीटिंग्स में जब डिस्कस होता है कि वहाँ की जो नुमाया हैसियत में पार्टी कैसे निखर के सामने आ रही है उसमें नुमाया नाम आपको बताए हैं, लिहाजा अजहर बेग साहब इसमें पाकिस्तान में आके पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन शाफी शाफे साहब इनको दिया और बहुत जिम्मेदारियां इनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी तंजीमी सरगर्मियों के हवाले से। इसमें ये है कि हमारे प्रेसिडेंट पंजाब के मलिक समीम मोहम्मद समीम खान साहब हैं, वो और समीम ये हमारे अजहर बेग साहब हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी तंजीमी सरगर्मियां और पाकिस्तान काफली के लिए काम कर रहे हैं जो कि नुमाया हैसियत रखते हैं। इसी तरह हमारे शाफी हुसैन साहब और सालिक हुसैन साहब, उन्होंने यही कहा है कि जो लोग ये इतना अच्छा हमारी अपनी नेचर को देखते हुए ये लोग काम कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, ये नुमाया हैसियत रखते हैं। इसी तरह सालिक हुसैन साहब जो कि ओवरसीज के मिनिस्टर भी हैं ओवरसीज के, तो वहां भी ये डेलीगेशन इंशाल्लाह जाएगा, हो सकता है उस डेलीगेशन में मैं भी हूँ और हम लोग देखेंगे कि वहां हमारे हमारे कायदे हमारे कायद जो हैं जो कि पूरे हम दुनिया में छा रहे हैं। आपको पता है राजा साहब कि हमारी काफ लीग जो है पूरी दुनिया में छा रही है और माशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। चौधरी जहूरुल्लाह शहीद का जो मिशन है जमहूरियत के अलमबरदार, उसी को लेके हम सब आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कायदीन चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब, चौधरी शाफी हुसैन साहब, उनके साथ अब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट मलिक समीम खान साहब और इसके साथ अब अजहर बेग साहब जो कि बहुत नुमाया काम वहां कर गए और यहाँ भी आके नुमाया हैसियत में उभर रहे हैं और सबको तंजीम इतनी अच्छी मुस्तहकम तंजीम बना रहे हैं जिससे हमें इन इन अपने इन लोगों पे बहुत हमें फख्र है। जी
1: रिफत, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ चौधरी शौकत साहब जो एक बिजनेसमैन है वो काफली के काफी जमाना सदर रहे।
0: जी
1: तो रिफत आप बताएं कि चौधरी सालक साहब या चौधरी शाफी साहब चूंकि अपने इलाके में बड़ा काम कर रहे हैं, गुजरात में बड़ा काम कर रहे हैं, चूंकि वो मिनिस्टर हैं उनके लिए तो पूरा पंजाब है बल्कि पूरा मुल्क ही उनके लिए, उन्हें काम करना चाहिए, तो ओवरसीज की भी बहुत सारी डिमांड्स हैं, तो हम आपसे भी कहेंगे कि जब आपकी मुलाकात होती है, आपकी मीटिंग्स होती हैं, तो जब ये सारे लोग बैठे होते हैं तो आप ओवरसीज के बात करें कि चूंकि चौधरी शुजात साहब ने यहाँ बड़ा काम किया है, जब ये पासपोर्ट का सिलसिला था, डेड बॉडी का सिलसिला था, तो उस वक्त डेड बॉडी जो है वो डेनमार्क से फ्री जाया करती थी, बल्कि उसके बाद पूरी दुनिया में हो गया। अब पीआई एयरलाइन जो है प्रॉफिटेबल ये जगह थी, यहाँ से सर मुबादला मिलता था और यहाँ इन चीजों को अब बंद कर दिया गया है, मैनचेस्टर चली गई, दूसरे ममालिक में चलेगी, प्राइवेट होगी दिस सेंटर, जो कुछ भी हुआ, लेकिन चूंकि इन लोगों के इनके वालदैन इनकी हिस्ट्री है, इन्होंने बड़ा काम किया है, खासकर डेनमार्क में बड़ा नाम इनका पैदा किया है, अब अजहर बेग साहब भी काम कर रहे हैं शुरू से ये चौधरी बिरादरान के साथ है, तो इस मसले को आप भी अपने मुख्तलिफ मीडिया पर उठाएं।
0: जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस सिलसिले में चौधरी सालक हुसैन साहब, जो कि ओवरसीज मिनिस्ट्री तो है लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के डेलीगेशन जाते हैं जब, और ये गए बगाए मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ लोगों के मसाइल सुनते हैं और पाकिस्तान आके उनके हाल की और तदारक की तकरीबन 99% कोशिश जो कामयाब हो जाती है, इसलिए कि बहुत सारे मसाइल का सामना है ओवरसीज को और हम यहाँ अक्सर डिस्कस करते हैं। अभी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, अजहर बेग साहब इसमें शामिल होते हैं और इसमें चौधरी शाफी हुसैन साहब और चौधरी सालक हुसैन साहब दोनों से जब अलग अलग मीटिंग्स होती हैं तो ये सारे मसाइल डिस्कस होते हैं, जो कि 100% जब कभी खत्म मसाइल तो हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई एक खत्म करते हैं दूसरा शुरू होता है, लेकिन कोशिश यही इनकी है कि सारे मिलके जो मेन इश्यूज हैं कम से कम वो नहीं होने चाहिए, छोटे मोटे जो है वो साथ साथ हल हो जाते हैं। जैसे अभी आपने फरमाया चौधरी शुजात हसन साहब ने डेड बॉडी का जो मसला था कम, इन्होंने एक तो फ्री पाकिस्तान में इनको किया और इनकी बहुत बड़ी काविश है जो कि सिर्फ चौधरी शुजात हसन साहब को ही ये क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को जाता है। इसी तरह बहुत सारे और मसाइल हैं जो कि मुस्तकिल हालिया से 1122 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने बनाई। इसी तरह बहुत सारे, एक वजीराबाद में हार्ट का एक पूरा हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, वो भी मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की ही काविज से बना है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फायदे दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं सालिक साहब उसे बड़े गौर से सुनते हैं और उनके हल की वो बहुत सीरियस हैं, बहुत संजीदा होते हैं इन मामला में, वो कभी किसी को एक तो नंबर दो काम या कोई रॉन्ग कहे तो वो नहीं करते, नंबर दो उसकी सजनश करते हैं और कहते हैं कि पार्टी में रहने अगर किसी ने किसी भी अहदेदार ने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाओ, अदरवाइज पार्टी में किसी के लिए कोई जगह नहीं है, बदनामी का बायस नहीं बने। लेकिन जो फर्स्ट एड करते हैं ये अपने नुमाइंदगान को अपने दादारान को, इसमें आपको एक और बात बताती हूँ, खुली कचहरी का जिक्र मैं करती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस ने शाफी हुसैन साहब और सालिक हुसैन साहब ने और चौधरी शुजात हुसैन के आर्डर पे उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा अवाम उन्नास का मसला हो तो मुख्तलिफ अदारों से वहां आके फीसेस बढ़ाए और दरख्वास्तें लेके आए। हम अहदेदारान जो जितने भी हमारे अहदेदारान हैं उनको कहा गया है कि अपने इलाका में आप मुख्तलिफ जो अवाम उन्नास में मुश्किल का शिकार हैं और वो नहीं पहुंच पाते मुतलका अदारों तक, तो अब उनकी रसाई नहीं है लेकिन उनको एक सहूलत दी गई है अहदेदारों को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के यहाँ आके आप अपनी ये अपनी दरख्वास्तें दें ताकि आपकी मुश्किल का अजाला किया जा सके। और माशाल्लाह से ये आगाज जो किया गया था इसके बहुत अच्छे नतज बरामद हो रहे हैं, क्योंकि लोग हैप्पी हैं और लोगों के काम हो रहे हैं, हर अदारे के मुतलका अफिसर को वहां बुलाया जाता है और हर ओहदेदार अपने इलाका के लोगों की एप्लीकेशन के साथ अपने मसाइल के साथ वहां आके जमा करवाते हैं, फिर उसका पीछा भी किया जाता है जब तक कि उसका काम ना हो जाए, पहली बात। नंबर दो, इसका एक और भी एक्शन है इस हमारी खुली कचहरी का, कि वो इलाके जहाँ के हमारे MPA हैं MLA हैं या वहाँ के हमारे अहदेदार वहाँ मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में हैं, लाहौर बीजन के पूरे इलाकों में यह खुली कचहरी वहाँ उनकी डोर तक जाएगी और वहां से जो लोग वहां पहुंच नहीं पाते मुस्लिम लीग हाउस में ये कचहरी वहां तक पहुंच जाए करेगी। हम सब नुमाइंदगान उधर मौजूद हुआ करेंगे और मुतलका अफिसर भी हुआ करेंगे और हमारे शाफिज साहब की मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी साहबान है वो भी साथ हैं, लिहाजा ये इतनी इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है और इसकी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये मजीद हम इस चीज को फैला रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि लोगों को पता चलेगा कि काफ लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इसके जो हमारी क्यादत है वो कितना दर्द दिल रखती है अपनी अवाम उन्नास के लिए। इसमें जो सबसे अहम किरदार हमारे सालिक हुसैन साहब और शाफी हुसैन साहब का, इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट पंजाब सुनील मलिक साहब हैं, इसके अलावा जो अजहर बेग साहब हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे से ये सारी एक कॉम्बिनेशन बना है, फिर अपने अहदेदारान को समझाते हैं कि मुस्लिम मीटिंग्स में कि हमें आप लोगों की तरफ से भी कोई शिकायत ना आए ताकि ये अच्छा मैनेज हो रहा है और माशाल्लाह इससे भी अच्छा करने की भरपूर कोशिश हम कर रहे हैं। जी
1: रेहत, आपने बड़ी तफसील से बताया। पिछले दिनों जब ओवरसीज की मीटिंग हुई थी बरतानिया में, हमें भी जाने का इतफाक हुआ, सारे ये लोग मिले, शाफे साहब भी मिले, शाफे साहब तो नहीं थे, चौधरी सालक साहब थे, इनसे भी बात हुई, तो इन चीज़ों की हम जिक्र तो करते रहते। अभी हाल ही में हमारे दोस्त हैं चौधरी जफर साहब, चौधरी शाफे साहब कनाडा गए हुए थे, वहाँ भी उनकी दावत हुई, खबरें हुआ, अपने भी काफ़ी ब्रेक की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के जो अहदेदारान हैं, यहाँ जो मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरी दुनिया में हमने देखा कि जो भी ये अहदेदारान होते हैं उनके पास लेटर होता है, जिस तरह अभी आपका मुझे लेटर नजर आ रहा है, आपके पास भी लेटर है, और यहाँ के जो चेयरमैन हैं या सदर हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं या खजानची हैं, जो भी अहदेदारान हैं, उनके पास यहाँ कोई चौधरी शाफे साहब की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई लेटर नहीं है।
0: जी राजा साहब, मैं आपके गोश गुजार करना चाहूंगी कि जो तंजीम साजी अजरबेग साहब वहां करके आए हैं, पहले लोगों की एहलियत देखी जाती है, उनको आपस में ज्वाइंट किया जाता है, जब वो बाउंड हो जाते हैं उनको सारी गिव एंड टेक का बताया जाता है, और माशाल्लाह से काफी अच्छी वहां मैनेजमेंट हो रही है। अब सालिक साहब या शाफे साहब जो डेलीगेशन जाएगा, या यहाँ अजरबेग साहब इतनी काविश कर रहे हैं कि उन लोगों को ये नोटिफिकेशन दे दिया जाए और वो पक्के अपने ओहदे को आगे फॉलो अप करें और अपने लोगों से ज्वाइंट हो जाएं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला, क्योंकि यहाँ ये सरगर्मियां तेजी से जा रही है अपने ओवरसीज के लिए, जो कि अहदेदारान है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वहाँ चेयरमैन मुस्लिम लीग नॉन डेनमार्क चौधरी साजिद हनीफ साहब है, राना फरहाद कोहतन है, ये सदर डेनमार्क है, और जनरल सेक्रेटरी साहब है सैयद अमीर मुख्तार हुसैन साहब, ये बहुत नुमाया हैसियत रखते हैं, बहुत काम कर रहे हैं। इनका नाम यहाँ आए दिन जब ओवरसीज की बात हो या तंजीम साजी की बात हो डेनमार्क के लिए या ओवरसीज के लिए, तो इनका नाम नुमाया हैसियत रखता है। चौधरी अजरबेग साहब ने, मिर्जा अजरबेग साहब ने जब अपनी सारी सरगर्मियां चीजें वहां की, यहाँ आके सारी मीटिंग्स में इनको डिस्कस की और माशाल्लाह से उनको एक्सेप्ट किया हमारे चौधरी साहबान ने, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब वो जो तंजीम साजी वहां पक्की हो चुकी हुई है, एक होता टाइम एक होता मुस्तकिल, वो जब हो चुकी है और उसको इंशाल्लाह नोटिफिकेशन दिए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब में मजीद ये सलीम मलिक साहब और अजरबेग साहब मिलकर ये काम कर रहे हैं और सारी रिपोर्ट्स चौधरी शाफी हुसैन साहब को, चौधरी सालक हुसैन साहब को जा रही हैं, और वो बहुत संजीदा है चौधरी बरादरान अपने पाकिस्तान और ओवरसीज के लिए, इनको हतमी शक्ल जल्द से जल्द दे दी जाएगी इंशाल्लाह।
1: तो इसका मतलब है कि जब यहाँ तशरीफ लाएंगे तो उस पार्टी होगी, जाहिर पार्टी वाले उनकी दावत भी करेंगे तो सारे लोग मौजूद होंगे, तो लगता है कि लेटर आकर चौधरी शाफी साहब ने या चौधरी सालक साहब ने यहाँ या अजरबेग साहब ने यहाँ आकर देने हैं।
0: जी वही जाके दिए जाएंगे और बड़ी अच्छी वो क्या सेलिब्रेशन होगी, आपको पता है ये हम जब नोटिफिकेशन दे दो तो हम सेलिब्रेट भी करते हैं, सेलिब्रेट से मतलब इतनी अच्छी खुशी का इजहार और तजदीद अहद किया जाता है कि अपने इस नोटिफिकेशन के मिलने के बाद हम अपने दिल और ईमान के साथ अपनी पार्टी को के साथ वफादार होंगे और अपने लोगों के साथ कमिटमेंट करेंगे जो उस पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा। और
1: आपके चौधरी बरादरान के दरीना साथी हैं चौधरी अशरफ साहब और इसी तरह चौधरी शौकत साहब यहाँ के जो बिजनेसमैन भी हैं, तो उनको भी नजरअंदाज ना कीजिएगा।
0: जी ऐसा ही है, जो पहले से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इतने अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ये भी यहाँ डिस्कस होता है। चौधरी बरादरान कहते हैं कि हमारे वो लोग जो पहले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को के में नुमाया काम और हैसियत रखते हैं, उनको कभी हम नजरअंदाज नहीं करना, चूंकि मैं खुद सुन रही होती हूँ बैठे, वहाँ आम पब्लिक का बंदा तो नहीं सुनता, लेकिन मैं गुफ्तगू सुनती हूँ और मैं आपको सही बता रही हूँ, ये बहुत इस मामले में संजीदा है, ये आए की बात नहीं करते। और सालिक साहब जब भी बाहर का विजिट करते हैं, चूंकि ओवरसीज के मिनिस्टर है, और जब वहां देखते हैं और एक एक बंदे की इनकी सीवी इनके पास होती है, कौन क्या कर और सबका उसकी क्या हैसियत थी, उसी हिसाब से उसको अगर वो किसी वजह से फंसे कुछ किसी वजह से रह गए तो उनको नुमाया हैसियत करके आगे लाना, ये भी मैंने बातें सुनी है अपनी अपनी मीटिंग में, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
1: रिफत, आपको बताते चलें कि जब चौधरी शुजात साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने पहला इंटरव्यू हमें लाइव दिया था, जिस तरह आप इंटरव्यू दे रही हैं।
0: वाह माशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है राजा साहब कि जब वहाँ नोटिफिकेशन होंगे और अजरबेग साहब की मेहनत रंग लाएगी और माशाल्लाह से चौधरी सालक हुसैन साहब और चौधरी शाफे हुसैन साहब इस मामले में बहुत कमिटमेंट जो की है अजरबेग साहब से, उस पर पूरा उतरने की कोशिश ही नहीं बल्कि 100% कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और वहां जाके जब ये नोटिफिकेशन होंगे ना, आपने फिर मुझे लाइव लेना है ऐसे।
1: रिफत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम जो है हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और मुझे सारे जितने लोग सुन रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच, सुनने का भी शुक्रिया।
1: सामान्य नाजरीन, ये थी रिफत साजिद जो के पाकिस्तान लाहौर की फिजाओं से हमारे साथ बात कर रही थी। ये सारी बातें आपने लाइव खुद सुनी, पार्टी पॉलिसी के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो लेटर जो है जब यहाँ आएंगे वो तकरीब होगी तो उसी में लेटर दिए जाएंगे, और उसके बाद ज़ाहिर है पार्टी के लोग हैं, खुशी भी मनाएंगे, जश्न भी मनाएंगे, या चौधरी सालक आएंगे या चौधरी शाफे आएंगे, लेकिन नमायाँ तौर पर मिर्ज़ा अज़हर बेग भी जो साथ होंगे, ये सारी उनकी ख्वाहिशें हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामिन नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है। इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है, जो जानी पहचानी है, इनका तारफ की ज़रूरत भी नहीं है, ये बुज़ुर्ग जो है सीनियर साफ़ी है, मेरी मुराद है जनाब असलम मेहर साहब। हाजी साहब, एक बार फिर आपको अपने ही अदारे पर खुश आमदीद कहते हैं।
3: शुक्रिया जनाब राजा गफूर अफजल साहब, रेडियो आपकी आवाज़ अपनी जितनी भी कैपेसिटी है, हिम्मत है, वक्त है, टाइम है, लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन मुहैया करने के लिए, हम तो इसको एक कम्युनिटी की खिदमत, पाकिस्तान के परचम को बुलंद रखने के लिए अपना हिस्सा डाल देते हैं। आप तो मुतवातर सुबह से शाम तक रेडियो के लिए बेहतरीन और काफी वक्त देकर लोगों के लिए मालूमात मुहैया कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ जी कि हम जुमे वाले दिन अपने राशिद अली साहब ने पूरी जो उर्दू की मीडिया टीम है उन्हें मधु किया था। वहां पर हमारे आसफ साहिल राजपूत थे, जावेद अली थे, अश्रम मेहर थे, गोंदल साहब थे, और जनाब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नौजवान सियासतदान बड़े ही हम्बलफुल, हर लफ्ज में उन्होंने अपनी खिताब में यही फरमाया कि मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो एक आजिज इंसान हूँ, अपने वालिद के बताए हुए तरीकों पर सियासत करता हूँ और पाकिस्तानी अवाम के लिए कवानीन में अगर सख्तियाँ हैं तो वो भी बताता हूँ, अच्छाइयाँ हैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। मैं डेनमार्क में पैदा हुआ हूँ और डेनमार्क में हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, तालीम ले रहे हैं, आला आला ओहदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों दफा कहा कि मेरे अंदर कोई अकड़ बकड़ या कोई ऐसी चीज नहीं, मैं आज भी से जिंदगी गुजार रहा हूँ और आखिरी दम तक अपने माँ बाप की हदायत के मुताबिक आज भी से ही जिंदगी गुजारूंगा। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून जनाब मोहम्मद आसफ साहिल राजपूत साहब ने अपने खिताब में बहुत अच्छी बात की। वो अपने दूसरे ग्रुप की अगर को भी वो बात करते हैं जो नून से मुंसलिक हैं, उनको भी इज्जत और तकरीम के साथ बुलाते हैं, उनका भी वो नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से। शौके साहब ने भी ये बात की कि भी दो ग्रुप हैं, लेकिन दोनों ग्रुप जो है मौजूदा हुकूमत के हिमायती हैं, उनके जियाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके लिए अपना वक्त लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, टेलीफोन करते हैं, हमें बुलाते हैं, राजा गफूर साहब को बुलाते हैं और दीगर दोस्तों को बुलाकर इस जुमे को बहुत ही अच्छी जबरदस्त दावत का एहतमाम राशिद अली साहब ने किया था और मखसूस दोस्तों को बुलाया था। ये अपने जो यहाँ पर वेल्बी में अपने कोलंबिया है, कोलंबिया रेस्टोरेंट, उनका
1: वो तो एक होटल की शक्ल इख्तियार कर गया, काफी बड़ा अदारा बन गया कोलंबिया।
3: हाँ जी, को इसकी ब्रांचें खुल गई हैं जगह जगह, बहुत ज्यादा 5-6 आदमी हर वक्त इनकी किचन में काम करते रहते हैं। उन्होंने कोलंबिया वालों ने, आप यकीन जाने कि इतना अच्छा खाना, मटन मछली, बात ये नहीं कर रहे कि मटन मछली की, नफासत थी, सफाई थी, अदब था, अपने मेहमानों का वो इतना ख्याल करते हैं यार के जैसे घर के मेहमान है, रेस्टोरेंट के मेहमान नहीं है। बार बार आकर पूछ रहे थे, हर चीज वहां पर टेबल पर खाने इतने थे कि जगह नहीं रही रखने के लिए, कितना खाएगा आदमी। बात तो यह है कि राशिद अली साहब ने दिल खोल कर अपने मेहमानों को कह रखा था कि आपने जो कुछ मंगाना है आप बोले वो हाजिर होगा। तो राशिद अली साहब ने वहां पर आपके एजाज में और सिकंदर के एजाज में उनको जो तमगा इम्तियाज मिला है, आपको अम्बेसडर साहब शेब सरवर साहब ने خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اس بات کا کہ آپ ہر سال قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر تمام رہنماؤں کو بلاتے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ جب آپ نے تقریب کی تھی یہاں پر اور سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی سوسائٹیاں یا قدآور رہنما سیاسی دینی ادبی کاروباری بزنس مین سب موجود تھے. انہوں نے کہا میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہیں جو پاکستان کی پہچان ہے, پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو ایک سال نہیں, دو سال نہیں, تین سال سے میں متواتر دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی راجہ غفور افضل یہ تقریب 25 دسمبر کو ہر سال مناتے ہیں اور بلا تفریق سب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور بولنے کا موقع دیتے ہیں. تو یہ خصوصی شیلڈ اس لیے آپ کو دی گئی. تو باقی جناب کل اپنے سکندر ممبر آف پارلیمنٹ سابق, انہوں نے تمغہ امتیاز کے بارے میں ایک گھنٹہ پوری تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ ایسے نہیں مل جاتا, اس کے لیے بہت کام, رپورٹیں چاروں طرف سے لی جاتی ہیں, ہر طرف سے پوچھا جاتا ہے اور ایک لسٹ بنائی جاتی ہے اس ملک کے اندر کہ اگر 10 آدمی بھی ہیں تو کچھ لوگ سارٹ آؤٹ کرتے کرتے کرتے کرتے پھر جب جیوری جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے, وہ اپنی رائے دیتی ہے, اس کے کارناموں کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر, ان کے سامنے اس شخص کی پوری بائیو ڈاٹا ہوتی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, ملک کے لیے کیا کیا ہے, اس دنگے کیے ہیں یا کہ کام کیا ہے, کیا کیا ہے, وہ ہر چیز اس کی پوری وہاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جس دن سے اس نے پاکستان ڈنمارک کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. تو پھر ووٹنگ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت ہے, اسی چیز کو مد نظر رکھ کے سکندر ملک صدیق کو تمغہ امتیاز دیا گیا ہے. تو یہ تمغہ امتیاز ہر آدمی کو نہیں ملتا. آپ دیکھیں ہماری جو تاریخ ہے, ہم 56 یا 60 سال سے یہاں پاکستانی آئے, مزدور کی حیثیت سے آئے, کام کیا وطن کے لیے, انہوں نے جو کچھ ہو سکا اپنی محنت کی, پاکستان کے پرچم کو بلند کیا. یہ واحد شخص ہے پہلا ہمارے میں سے جو ہم میں پیدا ہوا, یہاں پیدا ہوا, اس کو تمغہ امتیاز. غلام صابر کو جو ملا تھا انہوں نے علامہ اقبال کے اوپر, علامہ اقبال شاعر مشرق قائد اعظم کے ساتھی تھے, اس سکندر ملک نے نوجوانوں کے لیے کام کیا, ہمارے لیے کام کیا ہے. یار وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی ایسی پراؤڈنیس نہیں, میں تو ایک عاجز انسان ہوں, آپ میں سے ہوں. جب بھی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں کہ قوانین بنتے ہیں میں اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہوں, پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہوں. میں نے کہا سکندر ملک مجھے یہ تو بتائیں, کیونکہ میں ڈینش اخبار ریگولر ہی نہیں پڑھتا لیکن میں عالمی میڈیا جو اردو کا ہے نا, وہ آسٹریلیا سے ہو, کینیڈا سے ہو, امریکہ سے ہو, بی بی سی ہو, ڈوچ آف وائس آف ڈوچ ہو, جرمنی ہو, میں اردو میڈیا وہاں تک پڑھتا ہوں کہ یہ پرنٹ کہاں سے ہو کر نکلا ہے, وہ جو پریس ہے اس کا نام بھی پڑھ لیتا ہوں کہ یہ کس دفتر سے یہ خبر آ رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سکندر ملک نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, تو ان کو جو حکومت پاکستان نے آفیشیل طور پر یہ تمغہ دیا ہے یہ ہر آدمی کو نہیں ملتا. یہاں میں ایسے مثال دوں گا کہ عبدالستار ایدی میرا آئیڈیل ہے قائد اعظم کے بعد. آپ دیکھیں کہ ساری زندگی ایک کرتا ایک پاجامہ اور ہوائی چپل کے اندر پورے ملک کے اندر اس کا نام گونج رہا ہے نا, گونج رہا ہے. کیا کبھی تینوں افواج کے سربراہ کسی ایسی شخصیت کے جنازے میں شامل ہوئے تھے؟ فضائیہ, بری, بحری, تینوں افواج کے جری, بہادر, سپہ سالار, یہ ہواؤں کے مسافر, یہ سمندروں کے راہی, یہ سب جو ہیں عبدالستار ایدی کے جنازے میں, نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کا. اسی طرح ایک مزدور کا بیٹا, میں بھی مزدور آیا, سکندر کا والد بھی ایک مزدور آیا تھا, اس کے بیٹے نے کمیونٹی کی خدمت کی ہے, آواز اٹھائی ہے. اور میں نے کہا سکندر آپ کالم لکھتے ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے, مجھے یہ نہیں پتا دو چار کالم لکھے ہوں گے, پانچ لکھے. کہتا نہیں انکل, 100 کالم, 100 کالم لکھے ہیں میں نے, اور جب 100 کالم اخبارات میں کمپلیٹ ہوئے انہوں نے مجھے سپیشل بلا کر मेरी हौसला अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की कि आप आवाज उठाते हैं, 100 कालम कह देते हैं राजा गफूर अफजल, क्या मामूली बात है? हम घर बैठकर किसी को कह देते हैं ये अच्छा है, कहना चाहिए, बुरी बात नहीं। हमने अपने सफीर जो यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं, मशीर आते हैं, वजीर आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। लेकिन डैनिश मीडिया के अंदर मेरी जहां तक मालूमात है किसी और आदमी ने सिकंदर मल के अलावा कोई 100 कालम नहीं लिखा, वो बदस्तूर लिख रहा है। और फिर बार बार सर झुका के कहता था कि ये उर्दू मीडिया बैठा हुआ है, मैं आपके सामने आपका आजज भाई हूँ, आजज भाई हूँ। उसमें उसके चेहरे के तासरात भी पड़ रहा था यार। मैं कभी उनको कह भी दूं ना कोई ऐसी बात जो मतलब है कि नागवार हो, फिर भी कहता है आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे अंकल हैं। गाड़ी से उतर कर एक दफा मैं यहाँ यकीन जानो अपने घर के पास जो है ट्रैफिक इशारे पे खड़ा था, साइड पे गाड़ी खड़ी करके उतरा, मुझे सीने से लगाया, सलाम किया। ये है बड़ा पन। तो कोई ऐसे तो नहीं तगमा मिल जाता पाकिस्तान से? तगमा जो है ये एक पहचान है उसकी, और आइंदा भी इंशाल्लाह वो इसी तरह पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, हर आदमी की जो भी मसला हुआ। और दूसरे नंबर पे इस वक्त बुखारी साहब जा रहे हैं, मेरी दुआ है कि एक वक्त आए इजाज़ बुखारी साहब को भी हुकूमत पाकिस्तान रेकनाइज करे और इनको भी तगमा दे, क्योंकि उनकी भी बड़ी खिदमात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो शेर साहब को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। छोटे छोटे मेरे पास 7 साल की बच्ची की तस्वीर है, मैं दिखा सकता हूँ। तो वो कहने लगी कि हम कहाँ देख रहे थे कि लोग आकर मैंगो फेस्टिवल में हाथ मिला रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, और शेर सरवर साहब को बड़े मोहब्बत से देख रहे हैं। तो मैं भी माँ का हाथ छुड़ा कर ना भाग कर सफीर साहब के साथ खड़ी हो गई, तो मेरी माँ ने मेरी तस्वीर उतार ली। यार ऐसे एम्बेसडर जो है ना, ये रीढ़ की हड्डी हैं, ये हैं एम्बेसडर। हमें तो यहाँ बहुत सारे एम्बेसडर आए, कह दिया जी कि आप रीढ़ की हड्डी हैं, और रीढ़ की हड्डी बन के दिखाओ, काम करके दिखाओ, मुल्क का नाम ऊंचा करो। दूसरी बात, अब मैं कह के इजाजत लूंगा कि आप देखने कितने सुफारा आए यहाँ पर पाकिस्तान में, जो डेनमार्क की डैनिश सफीर है, खातून है, मौजद है, एहतराम है, मोहतरमा है। तो वो बैठी हुई थी वहां पे, पता भी नहीं चल रहा था कि ये एम्बेसडर है। जब उन्होंने अनाउंस किया, ये सामने जो खातून सोफे पर बैठी हुई थी, कि ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में डेनमार्क की सफीर है, तो तल्लकात बनाना, मुल्क की इज्जत में इजाफा करना, हलाली परचम को लहराना, ये वही लोग करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हों, जिन्होंने अपने मनसब पर रहते हुए एक मजदूर की तरह काम करके दिखाया हो। काम चमकता है, आदमी का नाम नहीं, उसका काम चमकता है।
1: मेहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने चीजों को एनालाइज किया। तो मेहर साहब मुबारकबाद देते हैं कि अहमद फारूक साहब जो सबका सफीर थे डेनमार्क तशरीफ लाए हुए थे, कल पिया मुनीर साहब ने हमें एक तस्वीर शेयर की, देखकर जो है बड़ी खुशी हुई। और एक तस्वीर भी थी जिसमें मियां साहब और नसर मलिक साहब और अहमद फारूक साहब भी थे, वो बड़ी अच्छी तस्वीर थी, बड़ी प्यारी तस्वीर थी, मियां साहब की है और अहमद फारूक साहब की भी बड़ी जो है वो तस्वीर थी। तो मेहर साहब हमें देखकर बड़ी खुशी हुई।
3: इमरान महबूब साहब की भी तस्वीर मुझे मियां साहब ने बराए रास्त भेज दी है तस्वीरें। मियां साहब बहुत एक्टिव हैं, सोशल हैं। और
1: तो चले मैं ये देखे ना, ये एक अच्छी चीजों की जो है वो तारीफ करनी चाहिए, अच्छी चीजों को जो है सराहना चाहिए। तो नसर मलिक भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा, इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं, वो भी डैनिश शहरी हैं और बात करते हैं, तो उनका भी हक है। लेकिन तस्वीर जो मियां साहब की और अहमद फारूक साहब की, नसर साहब की, बहुत ही खूबसूरत है।
3: हाँ जी, इमरान महबूब भी साथ हैं एक तस्वीर,
1: वो भी बड़ी तारीखी तस्वीर है, दोनों तारीखी तस्वीरें हैं।
3: मैं अब आपने नसर मलिक साहब का नाम लिया है तो आप सुन लें कि मैं हकीकत बयान करने से कभी भी घबराया नहीं और ना ही ये समझता हूँ कि मैं छोटा हो जाऊंगा। लुबना इलाही ने बहुत अरसा पहले कहा था, अंकल हमने जो काम करना था कर लिया, ना कोई हमें छोटा कर सकता है, आपको भी मुझे भी लुबना को ना कोई ऊंचा कर सकता है, हमने जो करना था कर लिया है। अब नसर मलिक की बात सुन लें, नसर मलिक साहब अपनी टीम के साथ یہ جب ریڈیو ڈنمارک پہ کام کرتے تھے میں ان کے پاس میرا خیال ہے 20 مرتبہ گیا ہوں. میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ یہ جنگ اخبار خریدتے ہیں اور سرخ سیاہی سے اس کو انڈر لائن کر لیتے تھے کہ جس کو خبر اپنے انداز سے یہ بناتے تھے اور اچھی خبر بناتے تھے. پہلا یہی اردو کا ایک ادارہ تھا, اب تو جگہ جگہ کے اوپر ہمارے ہاتھ میں, اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں ٹیلی ویژن ہاتھ میں پکڑ کر آپ سے بات کر رہا ہوں, تصویر جو نظر آتی ہے اور پوری دنیا سن سر رہی ہے, پورا یورپ, یورپی یونین سن رہا ہے, یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں. تو نصر ملک کو میں نے بیٹھ کر دیکھ کر کام کرتے ہوئے جب دیکھا تو جناب والی جن کے ٹیبل کے اوپر ایک کپ بھی پڑا ہوا تھا, میرا مشاہدہ الحمدللہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اندر سے کالا باہر سے سفید تھا. کافی پیتے تھے, لکھتے تھے, کاٹتے تھے پھر لکھتے تھے. تو خبر بنانے کا ڈھنگ جو ہے میں نے نصر ملک سے سیکھا. اور ایک مرتبہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو نصر ملک نے میری اردو چیک کرنی تھی. انہوں نے 22 لکھائے, شاید مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ بھی ساتھ تھے, شاید 22 یہ بولتے گئے میں لکھتا رہا. تو پھر انہیں یقین آ گیا کہ میں اردو میں مشکل سے مشکل الفاظ بھی لکھ سکتا ہوں. میرے اس حوالے سے نصر ملک استاد ہیں اور یہ پاکستان میں صحافی تھے. جب یہاں ولی خان آئے کوہنور میں, کاکر ایوب صاحب نے ان کے اعزاز میں ساگا سینما ختم ہو گیا, وہاں لیڈل مارکیٹ بن گئی ہے کھانے پینے کی, تو وہاں پر نصر ملک کی ملاقات اور میں بھی تھا اور بھی لوگ تھے, ایوب کاکر بھی تھے. تو انہوں نے ولی محمد,
1: حاجی صاحب ذرا میں درست کر دوں, وہ کوہنور میں نہیں آئے تھے, وہ شیخ صاحب جو ندیم کا ریسٹورینٹ تھا اس میں آئے تھے.
3: وہاں بھی تھے, کوہنور میں بھی آئے تھے, یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں,
1: کیونکہ آپ کے پاس نالج زیادہ ہے,
3: کیونکہ وہ وہاں بھی آئے تھے اور یہ شاید آپ کے آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے پاس ان کے انٹرویو کی کاپی تھی جو انہوں نے دکھائی ان کو, اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں نے آپ کو پاکستان میں انٹرویو دیا تھا, کیونکہ ان کو تو ایوب کاکر صاحب نے وہ اپنی.
1: چلیں آج صاحب, چونکہ آپ تجربہ کار ہیں ماشاءاللہ, آپ کے پاس بڑا نالج ہے, آپ کے پاس پوری وہ کہتے ہیں بکسے بھرے ہوئے ہیں, جو ثبوتوں کے بکسے بھرے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آج صاحب.
3: اور انہوں نے ریکارڈنگ کی تھی, نصر ملک نے باقاعدہ ریکارڈنگ کی, اور میں نے وہ خبر جو ہے خود اپنے طور پر, کیونکہ میرا استاد ہے خبر بنانا لکھنا, اس کا بیلنس کرنا,
1: سب استاد کا احترام کرنا چاہیے, یہی ہمیں سکھایا گیا ہے.
3: تو وہ تحفظات ہو سکتے ہیں اپنے اپنے, اور ایک بات وہ یہ بھی کہتے ہیں تمہارا دین تمہیں قبول, میرا دین مجھے قبول. میں بھی انہیں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یہ کوئی ایسی ناراضگی کی بات نہیں ہے. میرے بچے یہاں پر ڈینشوں سے تعلیم نہیں لیتے, آپ کے بچے نہیں لیتے, اوروں کے بچے نہیں لیتے, ان کا دین ان کو قبول, میرا دین مجھے قبول. کیا میرے بچے جنہوں نے ماسٹر کیا ہے, جنہوں نے اچھی نوکریاں لی ہیں, جنہوں نے امپیریل سینا میں مجھے دعوت ملی تھی کہ میاں ماں باپ تمہارے آ سکتے ہیں جب تمہیں ہم سند دیں گے, اور منسٹر آف ایجوکیشن نے سند دی ہے میری بیٹی کو, میں جب وہاں پہ گیا تو ان کو پڑھانے والے جو ہیں وہ لالا موسیٰ کے پروفیسر نہیں تھے, ڈنمارک کے پروفیسر تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ نصر ملک میرا استاد ہے خبر بنانے کا ڈھنگ, بلکہ میں یہاں تک کہوں گا یہ دعویٰ ہے نصر ملک کا, یہاں جتنے ماہنامے رسالے نکلے ہیں نا ان کو بھی کچھ نہ کچھ, میں لفظ کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ, سب کو نصر ملک نے سکھایا کہ میگزین بنایا جاتا کیسے ہے. وہ تو ویزا لے کر آئے تھے, یہاں جرنلسٹ بن کے آئے تھے, وہ کسی کا بیٹا نہیں بن کر آئے تھے. صدائے پاکستان کی کاپی اسلم مہر کے پاس آج بھی موجود ہے صدائے پاکستان کی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ
1: حاجی صاحب جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی علم دیا ہے اس کی تعریف کرنے چاہیے, اور آپ بھوگوں سے کام لیتے, ہم بھی بھوگوں سے کام لیتے, جس طرح آپ نے کہا ہے وہ اپنے طور پر, آپ اپنے طور پر بڑی اچھی طریقے سے آپ وضاحت کر دیا ہے. اور اسی طرح اگر دیکھیں مالمو میں حاجی صاحب الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کا بڑا اثر رسوخ ہے وہاں پر بھی مالمو میں بھی, کیونکہ مالمو کے پاس بھی دوہری شریعت ہے, پاکستانیوں کے پاس جو ہے نا وہ بھی ووٹ دے سکتے ہیں, یہاں بھی رہتے ہیں مالمو بھی رہتے ہیں, تو حاجی صاحب دوسری یہ بات ہے کہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں تو ہم تو اس ملک میں رہتے ہیں سویڈن یا اسکینڈینیویا کے جو ممالک ہیں وہاں تو سارے اس ملک میں رہتے ہیں اس قانون قاعدے کے اندر رہتے ہیں, کوئی سنی ہے کوئی وابی ہے کوئی شیعہ ہے کوئی مرزئی ہے, تو اس میں حاجی صاحب یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس طرح کا.
3: نہیں دیکھیں انہوں نے دو مسجدیں باقاعدہ زمین سے اٹھا کر اہل توشیع کے لیے آرنوائے نہر برو نصر اپنے ناصر فوڈ سٹور کے پاس سے گلی جاتی ہے, کیا وہ مسجد بلٹ کر کے نئی بنا کر کنسٹرکشن کمپنی نے نہیں دیا آپ کو اہل توشیع کو؟ اور این وی میں قطر نے 120 ملین ڈینش کراؤن, میرا خیال ہے اب صحیح پتہ نہیں, 120 ملین جو ہے انہوں نے قطر نے خرچ کر کے آپ کو بہترین مسجد این وی میں این وی نہر بروس میں بنا کر نہیں دی. مالمو کے اندر بھی میں وہاں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں, وہاں جناب روزن گارڈ میں پتہ نہیں کتنے ملین کرون لے کر انہوں نے زمین کا قطع خریدا اور اس کے اوپر سویڈش فرم نے کمپنی نے بنانے والے انسٹرکشن جو ہیں کنسٹرکشن فرم اتنی پیاری مسجد بنائی ہے کہ جب دور بیٹھا کوئی عالم خطاب کر رہا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کان میں جو ہے نا وہ ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور میں سن رہا ہوں. اتنی پیاری مسجد وہاں سینکڑوں میرا خیال ہے 1000 آدمی آسانی سے, تو یہ انہوں نے سہولت دی ہے مجھے جو میں اپنی زندگی.
1: حاجی صاحب یہ دیکھیں نا وہاں جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے, وہ بہت بھی بڑی خوبصورت ہے. حاجی صاحب یہاں قانون کا احترام کیا جاتا ہے؟
3: قانون کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ اگر موٹر وے سے آ رہے ہیں وہاں پر تو ہر دفعہ جب میں گاڑی پہ جاتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ تو وہ جو ہے بالکل موٹر وے کے پاس نیچے کھلے بڑی کھلی جگہ زمین جیسے فٹ بال کی ہوتی ہے تو ترکوں نے بنائی ہوئی ہے, ترکیوں نے بنائی ہوئی ہے مسجد, اور کار پارکنگ کی سہولت ہے بے تحاشا. بس میں نے ایک چیز نوٹ کری ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں, آپ تشدد نہ کریں, آپ یہاں پر کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں, کسی کو دھمکی نہ دیں, اور اپنے گھر بلا کر دھوکے سے دعوت میں بلا کر اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نہ دیں. اگر ایسا کام کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے اور آپ کے پاس ثبوت ہے تو سیدھے قانون نے پکڑ کر کان سے جیل میں ٹھونس دینا ہے.
1: حاجی صاحب اب قانون جو ہے بہت تبدیل ہو چکے ہیں, ہم سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے, جو بھی ہم یہاں رہتے ہیں یہاں کی ڈینس سیاسی جماعتوں کا حصہ بننا چاہیے اور یہاں کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. کوئی بھی عالم دین ہمیں نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ یہاں کے قانون کا احترام نہ کریں, وہ بھی فرماتے ہیں سارے عالم دین کہ یہاں رہتے ہیں یہاں قانون کا احترام کریں, دینی لحاظ سے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کریں.
3: اس کی مثال ایسے ہے کہ زاہد خان ہے اپنے کوئٹے یا پشاور کے, ان کے والد ڈاکٹر عبدالعزیز یہاں 40 سال پہلے آئے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں جو کوئی بات سیکھی ہے تو ان لوگوں کی محفل صحبت میں بیٹھ کر سیکھی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آگ کا کوئی انگارہ ہے بھٹی ہے اس کے قریب آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آگ اگر آپ کو جلاتی نہیں نا تو اس کے انگارے جو ہیں وہ باریک باریک اڑ کر آپ کی قمیض میں چھید کر دیں گے. اگر آپ عطر والی دکان کے پاس بیٹھے ہیں نہ بھی خریدیں عطر لیکن آپ کو اس دکان کے دروازے یا کھڑکی سے خوشبو ملے گی. میں ڈاکٹر عبدالعزیز یہاں 40 سال پہلے تھے, زاہد خان ہے ان کا نام.
1: حاجی صاحب آپ تیسرا لفظ بھی کہتے ہوتے ہیں, آپ گندگی میں بیٹھیں گے تو گندگی آپ پر پڑے گی.
3: تو وہی تو نا وہ مثال وہ آگ والی دی ہے نا کہ آگ جو ہے وہ سوراخ کر دے گی قمیض آپ کے اندر. تو یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں اور ہو جائیں گی, اب نئی نسل تیسری چوتھی جوان ہو چکی ہے. آپ بعض اوقات کہتے ہیں نا اب وضاحت سن لو کہ جی نوجوان باہر نہیں نکلتے, ڈیموسٹریشن نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. آپ نے یہاں پر روڈ کے اوپر لڑائیاں نہیں کی بتائیں مجھے, انہوں نے دیکھی نہیں, پڑھی نہیں, سنی نہیں اخبارات میں, ریڈیو.
1: حاجی صاحب قانون بن گئے نا, دیکھیں بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں, بچے سب کے برابر ہوتے ہیں.
3: آپ کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بابے جو ہیں لڑائیاں لے کر آیا یہاں پاکستان میں, آئے مزدوری کرنے تھے, آئے مزدوری کرنے تھے. اور میں اکثر آج بھی میری بات ہوئی ہے کسی سے مجھے اب یاد نہیں آ رہا, میں نے انہیں کہا ہے कि अगर यार मैं पाकिस्तान में होता तो मैं अपने बच्चों को उन कॉलेजों उन यूनिवर्सिटियों में उन आला तालीमी अदारों में मैं तालीम नहीं दिलवा सकता था जहां जिनका मयार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है। हमारे बच्चों को डेनमार्क ने मुफ्त तालीम दी और जेब में करोड़ डालने हैं कि जाओ जाकर बर्गर भी खाओ, बर्बर भी खाओ, शफाफ पानी भी पियो, तालीम भी दी है, फर्नीचर भी दिया है। मेरे पास एक तस्वीर है गिलगित के अंदर, मेरी छोटी छोटी मासूम बच्चियां बर्फ के मैदान के ऊपर बैठी हुई इम्तिहान दे रही है। मैं तस्वीर दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरा शौक ये है कि या तो मैं किचन में अपनी मर्जी की सब्जी फ्रूट जो भी बनानी है क्या खाना है, और दूसरा मैं कीड़ा हूँ, कीड़ा मुझे आप हैं हूं तो मैं इंसान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूं, लेकिन मैं मुताले के लिहाज से मैं कीड़ा हूं पढ़ने के लिए। मेरे पास बच्चियों की तस्वीर है गिलगित।
1: जी साहब, आप तालीम की कदर करते हैं। देखें ना, जस्टिस रिटायर्ड रमदे साहब वो भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जंगल में। वो कहते हैं एक पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वही बच्चे जो है अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। वक्त आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा, या वो कोशिश तो कर रहे हैं।
3: आएगा, जरूर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, बर्फ है बिछी हुई सफेद चादर और बच्चियां सादे कपड़ों में बैठ कर अपना इम्तिहान दे रही है, और वो वहां पर क्यों नहीं स्कूल।
1: हाँ जी साहब, आप देखे ना, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, तालीम आपकी सारी आपको मुफ्त है, अस्पताल में आपको सारी सहूलतें मिलती हैं, जो बादशाह को भी मिलती हैं वो आप मजदूर को भी मिलती हैं। तो अजी साहब, इन चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम जिन जिन ममालिक से आए वहाँ जाकर ये बातें करनी चाहिए, वहाँ जो अच्छी चीज़ें वहाँ की अच्छी बातें यहाँ भी करनी चाहिए।
3: राजा साहब, उसकी मिसाल ऐसे है, आप कितनी बातें दूं कितने बताऊं। मुझे ये 30 साल पहले जो घर मिला ना, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, बेटा ये बोर्ड किस लिए लगा हुआ है? कहने लगे, ये बोर्ड लिखा हुआ है कि 8 बजे के बाद यहाँ आप फुटबॉल का जो थप्पा है नीचे फेंक कर उसका शोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या किसी किताब में मशगूल होते हैं। तो बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, मुझे ये 35 साल हो गए इस घर के अंदर, इस जगह। जो लोग अपने मुल्क की नस्ल को साइंसदान रॉकेट पर बिठाकर चांद पे भेजना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की नर्सरी को इब्तदा से, शुरू से, बार नहर से ऐसी तरबियत देते हैं। आप सुबह निकले इशारे के पास, टीचर उनका 5 साल के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, 8-10 बच्चे हैं, तो वो कहता है कि ये लाल रोशनी आपके दिमाग के अंदर ऐसे बैठ जाए कि जैसे कंप्यूटर में बैठती है। आपने नहीं जाना, जब ग्रीन होगी, सब्ज होगी, तो फिर चलना है आपने। वो 4-5 दफा ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। मैं खड़ा होके देखता हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी बनी हुई हैं, कि उनको वो उनके दिमाग के अंदर हिफज करा देते हैं कि सुर्ख बत्ती क्रॉस नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, लाल बत्ती से जिग जैग बनाकर गाड़ी निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं। कितने नौजवान मर गए हैं एक्सीडेंट के अंदर, कितने ही नौजवान। ये आदतें शुरू से बच्चों के अंदर दिमाग में डाल दी जाए ना, तो बिल्कुल बच्चे जो हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं केला खाकर ना छिलका, मैं अपनी बात करता हूँ किसी की, इसलिए नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, मैं छिलका सड़क पर फेंक देता हूँ बूढ़ा आदमी, ताकि फिसले और गिरे और मैं हंसूं और उसकी वीडियो बनाऊं। पाकिस्तान में ऐसा ही तो होता है। मैंने देखा एक बच्चा 5 साल का चिंगम मुंह से निकाल कर, तो वो डस्टबिन ढूंढ रहा था, डस्टबिन ढूंढ रहा था कि मैंने ये चिंगम चबा दी है, अब इसको मैंने सड़क पे नहीं फेंकना, मैंने डस्टबिन में फेंकना है। ये मुल्कों की तरक्की का राज, अपने बच्चे को बार नहर से साइंसदान बनाने के लिए और चांद पर जाकर दूरबीन लगाने के लिए तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ने प्लेन पकड़ना है, एम्बुलेंस आ रही है, और जनाब 20 गाड़ियां दाएं, 20 बाएं, 20 आगे, 20 पीछे, पूरी सड़क खाली उसके लिए करा लेते हैं कि भी वो जो है जा रहा है गवर्नर हाउस, अपने दफ्तर जा रहा है। तो फिर तरक्की कैसे होगी? यहाँ हमें सीखना चाहिए मुझे जब लोग मिलते हैं ना, बाद आदमी कहते हैं कि यार अगर 56 ईयर हैज बीन स्पेंड हेयर, यहाँ आपने गुजारे हैं 56 साल, तो आपने अभी भी कुछ नहीं सीखा। यार पैसा दौलत भी कमाओ, काम भी करो, आलीशान मकान भी बनाओ, प्लाजे भी बनाओ। 320 के उसके नसर मलक की रेडियो की खबर मेरे पास है, दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई नसर मलक ने रेडियो पर ये खबर नशर की थी 320 हमारे बंदों की है, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों को तालीम भी दें, उनको भी साइंसदान बनाएं। एक लड़का आया अभी, मेरी बात हुई ग्रोसरी की दुकान पे, उसने किसी एजेंट से नहीं कहा, उसने अपनी सीवी लगाई तो उसको माल्टा में, राजा गफूर साहब, माल्टा ने इंटरनेट के ऊपर चेक किया, उन्होंने कहा इतनी तालीम इसके पास है, इतना इसका दिमाग ब्रेन है, ये पाकिस्तानी बच्चा है। उन्होंने उससे रابطہ कायम किया और कहा कि इसी वक्त इस्लामाबाद जाओ और वीजा लो। हम उसको उनको कह रहे हैं कि हम स्पॉन्सर हैं इस लड़के के, हमने इसको पाकिस्तान से अपने मुल्क में लाना है। वो गया, उन्होंने कहा तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे आप पूरी तालीम ये पड़ी है, हम आपको वीजा देते हैं। टिकट भेजा, वो आ गया। अब जब आ गया यहाँ पर, उसकी 1 लाख नौकरी है, मानेंगे आप? मकान उससे पहले उसकी बीवी बच्चों के लिए दिया हुआ था, बनाया हुआ था, मेरी मुलाकात हुई है चंद दिन पहले।
1: तो हाजी साहब, तो इल्म की कदर की जाती है ना, हर दौर में इल्म की कदर हुई है।
3: इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते रहेंगे, बस एक ही गुजारिश है। सिकंदर मलक कहता है कि मैं आजिज रहकर यहाँ तक आया हूँ, अपने बच्चों को आजिज़ी सिखाएं, किसी का गिरेबान ना पकड़े, किसी को डराए ना, धमकाए ना, और दावत देकर घर बुलाकर उसको माँ तेरी, भैन तेरी, और तेरी
1: और भी मुतालबा कर रहे हैं कि सफीर मोहतरम की 2 साल नौकरी बढ़ाई जाए, ये आपको ख्याल कैसे आया?
3: ये जनाब सबसे पहले आइडिया और ख्याल और इस तरफ तवज्जो जो मबजूल कराई है, ये जनाब राशिद अली साहब ने जो बहुत बेहतरीन जबरदस्त उन्होंने जो हमारी पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त की है कोलंबिया रेस्टोरेंट में, उन्होंने ये ऐलान किया सबसे पहले, और अच्छी बात हम हर जगह से लेते हैं। वो उन्होंने कहा है जी कि मेरी तंजीम, मेरे दोस्त, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हें भी कहूँ कि ये मौजूदा सफीर, अभी यार देखें मैं कौन हूँ, मैंने तो यहाँ के फर्श साफ किए, जर्मनी में मैंने 2 महीने प्लेटें साफ की। तो मुझे अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि असलम यार तू आके साथ ना, कभी चाय भी नहीं पींदा है, मैं मुझे चाय की दावत दे रहे थे, ये जो अभी 2026-14 अगस्त को, तो मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैंने कहा मैं थक जाऊंगा, बच्चों के पास तमाम सबके पास गाड़ियां, ऐसा आदमी आज तक यहाँ नहीं आया अम्बेसडर, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुखालफत फरिश्तों के भी हम करने वाले हैं, मुखालफत करनी है ना तो उसकी कमजोरी एक पकड़ लेंगे, कोई पकड़ेंगे, यार बंदे हैं, हमसे गलतियां होती हैं, आदम की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी जन्नत में, कहा था उस दरख्त से नहीं खाना, तो उनको इसलिए जमीन पर अल्लाह ने उतारा। हमारा अव्वल वालिद कुरान कहता है कि तुम्हारी तमाम इंसानियत का अव्वल बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वहां से अल्लाह ने एक आदमी।
1: बहुत शुक्रिया आई साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात दी। अब हमें टाइम में इजाजत नहीं दे रहा, अगले मेहमान जो हमारे पास आ चुके हैं, इंशाल्लाह आज
3: साहब आखिरी 2 मिनट चले जी, वो भी आप
1: चले आज साहब, आप कह लें क्लोज कर लें।
3: नहीं बस मैं यही बात करनी है कि अपने बच्चों को जिसने तालीम दे दी ना, दौलत चोरी हो सकती है, दौलत पकड़ी जा सकती है, दौलत बरामद की जा सकती है, कहीं भी छुपाई हो, तालीम चोरी नहीं हो सकती। अल्लाह हाफ़िज़।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे हाजी असलम मेहर साहब जो कि आपको कीमती मालूमात दे रहे थे, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बयान कर रहे थे। सामान हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए दरअसल आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी ज़बान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। समान, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि ये हमारे प्रोग्राम जो होते हैं इंफॉर्मेशन के होते हैं, ये ना किसी के हक में होते हैं ना किसी के मुखालफत में होते हैं, ये टोटली इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है। चूँकि हम लोग लोकल हैं, लोकल रहते हैं, लोकल हमारी बातचीत होती है कि हमारी लोकल जो है कम्युनिटी क्या कर रही है। और समाइन, आपको पता है कि ये जो सितंबर का महीना और आ रहा है, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम बनाए थे और इस पर खुलकर बात भी की थी। तो अब सितंबर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और स्वीडन में जो हमारे एक पुल क्रॉस करते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, चूँकि वहाँ भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है तो वोट का हक भी लोगों के पास होता है। तो इस वक्त तजिया नगार शायद नसीम जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे जानने की ये सारी बातें कोशिश करेंगे। शायद एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुशामद कहते हैं।
2: जी राजा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शील्ड की, आपके मेडल की मुबारक दे दूं। मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था आप नसीम मजदूर थे, तो सफारत सफीर मोहतरम सफीर ने आपको एक मेडल या एक शील्ड पेश की, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। आज ही बात हुई है, आज ही आपने मुझे लिया, तो आज ही मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, और आप मीडिया पे नजर भी रखते हैं, और हमारे सबसे पुराने लिसनरों में भी आपका शुमार होता है।
2: जी जी, मैं आपका ये आप गालिबन बहुत पीछे चले गए हैं, 26 साल

0: कुछ बचे भी, आप भी, तो वो फिर पता लगा कि
1: नहीं नहीं
0: ये
1: आप
0: आया
1: याद होगा, आप कई दफ़ा जब आए तो खुशी से एक दफ़ा आपकी बात मैं आज ज़रा कोट कर दूं, लोगों को बता दूं, बाज़ ऐसी बातें होती हैं। और मैं और मुबशर प्रोग्राम कर रहे थे तो आप आए, आपने घंटी दी तो आपने कहा आए तो आपके हाथ में एक गालबन पिज़्ज़ा था ना, तो कहते हैं कि आप थक गए होंगे प्रोग्राम करके, चलें बैठ के चाय भी पीते हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, ये मैं
0: जी
1: रिकॉर्ड पे
0: बिल्कुल,
1: लाना चाहता हूँ।
0: ये बिल्कुल, ये बात याद आई है, ये बहुत बहुत बहुत मतलब बहुत काफी पुरानी बात है, और ये उस टाइम
1: बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है।
0: हाँ लेकिन पुरानी है, लेकिन यादें रह जाती हैं, और ये वाकई ऐसे हुआ था। और मतलब मुबशर एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक मुखलस इंसान है, वो मुझे याद है। और वो कैसी है ये चीजें जो कि यादें रह जाती हैं आदमी की, इंसान की, इंसान चले जाता है इस दुनिया से लेकिन फिर यादें रह जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं उसको, उस टाइम के जमाने, मेरे मेरे हिसाब से उस टाइम के जमाने ज्यादा अच्छे थे आज की बनिस्पत। अगर मैं आज देखूं तो देखें हम, बहरहाल इसके ऊपर मैं क्या डिस्कस करूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं
1: आज के आजकल जो है ना, ज़्यादा वो जिस तरह नहीं होता कोला जलता है, हालांकि कोला बड़ी अच्छी चीज़ है, फ़ायदे वाली चीज़ है, आप उस पर ग्रिल करते हैं, लेकिन आखिर में जब जो बंदा कोले से जलता है उसको पॉजिटिव लें तो वो जलने वाली चीज़ बड़ी अच्छी होती है, उस पर आप जो है ग्रिल करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जलना चाहते हैं तो फिर अब बंदा कोला आपको पता राख ही हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, कोले ने तो राख ही होता है आखिर में, तो उसका उसको फिर आप दोबारा तो नहीं वापस लेके आ सकते जब कोला राख हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: शायद आते
0: तो
1: हैं इलेक्शन की तरफ, आप सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी निषाद भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि क्या लेटेस्ट पोजीशन है इस वक्त।
0: जी राजा साहब, आपने मुझे इस वक्त फोन किया है, मैं इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ, जो कि उसके अंदर मेरी मेरी जो है ना खास कर, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि उसमें मेरी सारी डिटेल मेरे सामने पड़ी होती है सारी, खास कर क्योंकि हर चीजें, बहुत सी चीजें बंदा बंदा इंसान भूल जाता है ताकि गलत ना हो जाए। तो मैं इसलिए अपने सामीन, और आपने ये लेना है इस टाइम कोई क्या कहते हैं मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ये है कि कोई कोताही अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। स्वीडन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 13 सितंबर को है, जिसमें बड़े इलेक्शन है अपने रीजन के भी हैं, कमून के भी हैं और पार्लियामेंट के भी हैं। तो मैं स्टॉकहोम की पहले बात करूंगा, स्टॉकहोम से गालिबन 5 से 6 अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ डिटेल में कि मैं अपने घर ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ ना मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने आपकी कॉल उठाई, आपकी आपकी जो गुजारिश थी गुजारिश किया थी, आपका हुक्म था, तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, और क्योंकि आपकी कॉल आई है तो मैं दरअसल मैं कल चाह रहा था लेकिन कोई नहीं आज। तो उसमें ये है कि स्टॉकहोम से जो है ना तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, दो या दो जो पाकिस्तानी है वो उसमें दो दो दो खवातीन है, ये एक का नाम सारा नहीं सारा कुका नाम है, और एक का नाम जकिया बीबी, ये दो हैं, और एक बुजुर्ग है गालिबन 80 के करीब, वो भी रीजन से भी और कमाउन से भी और पार्लियामेंट से भी खड़े हो रहे हैं। बाकी एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई खटाना साहब है वो कमाउन से, और दो और जो है पाकिस्तानी वो भी वो कमोन से खड़े हो रहे हैं। और ये जो लेडी है सारा कुका, ये खड़ी हो रही है स्टॉकहोम के साथ, एक शहर है जैसे कोपेनहेगन के साथ ग्लोस्टोप होता है, या क्यों कह लें, या कोई ऐसे क्लासक से वगैरह वगैरह, तो वो एक उसके लिए मेयर के लिए खड़ी हो रही है, और उनके जो चांस हैं जो है मेयर के लिए, वो सुनने में आ रहा है कि 90%, 85-90% के करीब है वो मेयर के लिए खड़ी हो रही है सारा कुका। और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो, ये मैं स्टॉकहोम की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो काउंसिल के लिए, वो एक पार्टी का नाम है मिलियो मिलियोपैथी, जैसे एनवायरमेंट जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी उस तरह की एक पार्टी है। और बाकी जो दो दोस्त हैं वो सोशल डेमोक्रेट में हैं और वो काउंसिल के लिए हैं। तो इसकी मजीद डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगर मैं अपने ऑफिस में हुआ तो इंशाल्लाह ताला के नामों के साथ पूरी, के क्या है और किधर किधर से और क्या है। ये तो हो गया स्टॉकहोम से मेरे शहर यानी कि मालमो से, उधर जो है गालिबन 5 से 6 हैं, जिसमें से दो जो पाकिस्तानी हैं, तीन जो चार हैं वो पाकिस्तानी जो है, वो 3 से 4 जो है मुझे अगर मुझे गलत नहीं हो तो वो कदियानी जो उनका जो जो फिरका है उस सब से खड़े हो रहे हैं।

0: वो इधर मालमा में, स्टॉकहोल्म में ऐसे कोई नहीं है। तो वो और जो दो पक्षनी है, जो जो अपना जो पक्षनी है, जिसे हम क्या कहते हैं रियल पक्षनी ये कह लें, वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है अपना कामरान अनवर साहब, और दूसरे अमजद खान साहब। और अमजद खान साहब भी एक बुजुर्ग से मिलने, बुजुर्ग से मुराद के 70 के करीब उनकी एज है। और कामरन जो है वो आपको पता ही है, वो एक
1: नौजवान
0: यूथ में
1: है।
0: आता है, नौजवान में कह लें, नौजवान में आता है। और ये दो जो लोग हैं, इनकी कैंपेन जो है जारी है, और मैं कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। तो अभी जो है इसकी जो शिद्दत है, मैं सुनने में आया, मैं आज 20-21 है गालिबन, अगर डेट मुझे गलत नहीं हो, तो मेरे ख्याल है बीस
1: आज
0: इक्कीस
1: बाईस है,
0: बाईस
1: बाईस है
0: हाँ
1: आज।
0: बाईस मेरे ख्याल है गालिबन नेक्स्ट वीक तक इनकी कैंपेन में वो शिद्दत आ जाएगी। तो शिद्दत से मुराद के फिर ये उसको बढ़ चढ़ के जो ना कैंपेन को करेंगे, मेरा यो ख्याल है जो मुझे सुनने में आया। तो और ऐसा होना भी चाहिए।
1: तो
0: तो
1: क्या
0: जो
1: ये
0: जो
1: बिरादरी कौन सी, देखें ये सारे बेसिकली सारे स्वीडन हैं, चूंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस पर कोई जात पात वाला तो मसला ही नहीं होता, किस ग्रुप से है किस ग्रुप से नहीं है। तो लेकिन ये जो क्या कादियानी बिरादरी इतनी है जो इतने तीन मैंडेट उनके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं?
0: देखें जी, कादियानी जो जो जो कहते हैं बरादरी की आप बात कर रहे हैं, वो उनका एक ये यानी कि वो एक मुनज्जम लोग हैं। मैंने जो देखा है वो गोथेबर्ग में भी हैं बहुत ज्यादा, यानी कि स्टॉकहोम से ज्यादा वो यूथेबर्ग, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गोथेबर्ग, एक शहर है जो स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर जो है वो मालमो है। गोथेबर्ग में वो काफी तादाद में, मैं उसका भी पता कर रहा हूँ कि वहां पर कितने हैं पक्ष नहीं है मेरे, मुझे कल तक पता लग जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा ताकि गलत ना हो जाए। तो उधर से मुझे लगता है कि उधर से भी काफी होंगे ये अपनी जो कदयानी बरादरी है। बाकी जो आपने बात की है कि वो हो जाएंगे, क्योंकि वो एक मुनज्जम वो लोग हैं, और वो तल्लुकात की बेस पर, मेरे एक सुनने में, एक मैं जगह पढ़ रहा था यार सर, वो तल्लुकात की बेस पर एक जगह को लिख रहा था पाकिस्तानी, जो अपने जो हम कर रहे हैं इलेक्शन कंपेन, उसमें वो लिख रहे थे कि जगह तल्लुकात की बेस पर हमने ये इसको वोट देने हैं। तल्लुकात की बेस पर नहीं होते वोट, ये कारकर्दगी और आपकी जो आप मंशूर जो दे रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर लोग आपको वोट देते हैं। यहाँ पर तल्लुकात की बेस पर पाकिस्तान में किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल उधर भी अब खत्म होना चाहिए। तो ये इन मुल्कों में आके जब आप रह रहे हैं 10-15-20 सालों से, कोई रह रहा है 10-15, कोई कोई शादी करके आया, कोई दामाद आया, ज्यादातर यही है ना, मैं मेरी जैसे तो कोई कम है जो जो इस वक्त यहाँ पर स्वीडन में है। तो जो जो शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके वालदैन 60 साल पहले आए थे या 20 साल पहले, तो आप जब आए हैं तो आप 10-15-20 साल यार बहुत होता है इन मुल्कों से सीखने के लिए। जमहूरियत का सियासत भी एक सियासत तो हराम नहीं है, सियासत भी एक बड़ा अच्छा बड़ी चीज है, लेकिन एक मुनसफ सियासत, एक कहते हैं ना कि अपने दिल के साथ, एक लेगल लिबर्टी, मुनाफ्त के बगैर, झूठ मकारी के बगैर भी आप सियासत कर सकते हैं। सियासत तो किसी ने रोका आपसे, सियासत बड़ी अच्छी चीज है कि सियासत से आप जिस चीज अपने मुल्क के लिए सियासत कर सकते हैं, अपने मुल्क के मफाद के लिए, जैसे ये लोग करते हैं, मैं डेनिश की भी मिसाल दूंगा आपको, स्वीडन की भी, जैसे ये लोग करते हैं अपने मुल्क के मफाद के लिए ये सियासत करते हैं। हाँ, इनमें भी बड़ी चीजें हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन ये मैं फिर उधर आ जाता हूँ कि मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा यार ये क्या लिख रहे हैं कि जी आप तलुकात के बिना पर एक दूसरे को वोट दें, और यार ये मैं पढ़ा, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने बात की कदियानियों की। दूसरा मेरे ख्याल आपका गालिबन सवाल होगा ये अपने जो पक्षनी है, जो जो है, तो उसमें ये कह लें, जिसे कहते हैं सुन्नी पक्षनी जिले कह लें, तो उसमें ये है कि अगर ये लोग मनज़म तरीके से करें अपनी जो है क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन, इस तरह ना करें कि जैसे इन्होंने कहते हैं कोपनहेगन में किया, जो जो बात गलत है उसको तो मानना चाहिए ना। अगर कोपनहेगन में 5 लोग दोस्त हमारे इलेक्शन हार गए, बहुत बड़ी बात है ये, तो उसके बजाय कि अगर ये मैं बात करूँ गुस्सा करने की, उसकी अपनी गलतियों को सुधारने के, जैसे ये लोग डेनिश लोग करते हैं, स्वीडिश लोग करते हैं, बड़े खुशी से सुनते हैं, कहते हैं हम हारे हैं और हमें हमने ये गलतियां की हैं, लेकिन हमारे ये लोग बहुत कम इस यहाँ के भी जो तीसरी चौथी जनरेशन है, मेरे ख्याल चौथी जनरेशन तीसरी भी और चौथी भी काफी काफी बेहतर आ रही है और आएगी जो आगे आ रही है, चौथी तो शुरू हो गई है और मेरे ख्याल अगले 10-12 साल में तो वो काफी बेहतर होगी और वो इसको जैसे ये लोग करते हैं उसी तरह करेंगे बर्मला। बिल्कुल, वो अगर कोई चीज गलत की है उन्होंने उसका बर्मला वो जो है ना मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि हमारे साथ क्या कोताहियां हुई हैं, ताकि आपके वोटर नेक्स्ट टाइम आपसे बेजार ना हो और आपको वोट दें। और स्वीडन का भी यही है, अगर ये अपने इस कंपेन में बिल्कुल यूरोप की तरह जिस मुल्क में ये रह रहे हैं, उधर की जो पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं उसको मद्देनजर रख के अपनी कंपेन करेंगे तो आपके इलेक्शन जीतने में काफी चांस हो जाएंगे, तो आपको वोट देंगे लोग, आपको सुनेंगे। लेकिन पहले तो आप ये बताए ना कि आप लोगों को बता क्या रहे हैं, कि आप उसमें जो ये आप जो चीज आप बता रहे हैं कि आप उसमें अमल दरामद करा सकेंगे, क्योंकि आप वही चीजें बताए ना जिसमें आप अमल दरामद वो करा सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं। जैसे कि डेनमार्क में बहुत से लोग आउट हुए हैं, पख्तूनों के अलावा अरबी आउट हुए हैं, तुर्की कुर्दिश आउट आउट हुए हैं, सियासत से बिल्कुल ही खत्म कर दिए लोगों ने। उसकी वजह यही हुई है कि आप झूठ एक दफा बोल लेंगे, दो दफा बोल लेंगे, तीसरे दफा लोग आपका फर्क कर देंगे। तो आप वो चीज करें जो पार्टी के मंशूर में, पार्टी से आप बात करके जिस पार्टी के लिए टिकट लिया आपने वो आपको बता रहे हैं कि हम कर सकते हैं, ये आप अपने वोटर को बताएं, नहीं कर सकते वो ना बताएं। और वोटर आपसे सवाल करेगा तो आप उसको साफ बताएं कि इसका मैं कर सकता हूँ ये
1: शायद
0: नहीं कर
1: आपने बड़ी
0: सकता।
1: दिलचस्प बात बताई है, हम लोग यूरोप में रहते हैं, स्कैंडिनेविया में रहते हैं, आपने बड़ी ये मैं समझो कि बड़ी खबर है और आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आज दे दी है कि यहाँ जो है वो अपना सुन्नी कादियानी इलेक्शन हो रहे हैं।
0: नहीं, मैंने
1: वोट तो
0: ये
1: सुन्नी का भी बराबर है, कादियानी का भी बराबर है, शिया बरादरी का भी बराबर है, यहाँ तो वोट सब बराबर है।
0: मैंने आपने ये कहा था कि दूसरा, यानी मैंने ये बताया था कि पक्षनी है,
1: आपने इन्फॉर्मेशन
0: इंफॉर्मेशन
1: की हद तक बात कर रहे हैं ना,
0: की हद तक बात कर रहा हूँ। मैंने ये
1: आपका
0: बताया
1: किसी
0: था
1: से
0: कि
1: मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।
0: नहीं है, मैं ये बात कर रहा था कि एक जो जो कहते पक्षनियों का वो जो भी है उनका फिरका, उसको छोड़ें, वो मुनज्जम है, मुनज्जम होके और उनके चांस ज्यादा है इलेक्शन जीतने में। उनके पार्टी जो जिस पार्टी से वो खड़े हैं वो 3 है या 4 है या 2 मालूमों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये शक है कि वो उन वो सीटें निकालेंगे, क्योंकि वो मुनज्जम होकर काम करते हैं, वो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते, पक्ष नहीं है वो भी, जारी बात हमारी तरह उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हमारी ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो ये तो फिर पक्ष नहीं हुए ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आप मुनज्जम होकर कर सकते, अपनी कंपेन चला सकते हैं या अपना अपनी सियासत कर सकते हैं, इधर क्यों आप की जो है एक बात क्या कहते हैं मुंह के ऊपर और होती है, पीठ पीछे और होती है, दरमियान में और होती है, तो इधर तो फिर आप जो है ना फिर मुनज्जम ना होए। मैं इसकी मिसाल मेरा अपना मुल्क जो है डेनमार्क, उसकी बार बार दे रहा हूँ। क्यों देता हूँ बार बार, कि उसमें 5 लोगों का हारना बड़े इलेक्शन में बहुत बड़ी यार बात है, छोटी बात नहीं है। जो जो मुल्क ये सुनता है ना यूरोप का, उधर भी पक्ष नहीं है, वो हैरान रह जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता लगता है, कहते हैं ऐसे हुआ है, मैंने कहा जी ऐसे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है, उसकी उसका जाला नहीं अभी तक किया कि क्या हुआ है, उसकी अभी शर्म नहीं आई, या मुझे तो आ गई है कि शर्म आ जाए कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है ऐसे, क्या किया आपने, आप इधर की सियासत कर रहे हैं, इधर की सियासत में आप इधर ही की सियासत के लोगों से मिलें, इधर की ही कंपेन चलाएं और इधर ही की मशहूरी करें, इधर ही की पार्टी की। जो ही आप किसी के पीछे लग के दूसरी दूसरे मुल्क की सियासत को करेंगे आप अपनी कंपेन में शामिल, लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, वोटर आपको देख रहा है, तीसरी जनरेशन चल रही है वो आपको देख रहा है, अब ये दूसरी पहली जनरेशन नहीं है जिसमें आप ओए छड़ो यार कोई नहीं गल, ओए पुत्र वोट पा दे, अब ऐसे नहीं है। मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, अभी 13 को जाना है ना, मैंने किसी पार्टी को डालना है, मेरे बच्चों ने किसी पार्टी को, मेरी बीवी ने किसी पार्टी को डालना है, और मैंने बात भी की कि कहते पापा तू खे एक फैसे लॉस वो उसके बीच टाइम सो खत्म बात हो गई, मैं
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: खत्म,
1: जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी तरीके से आप बात करें, चूंकि इसको आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैक्सी ब्रांच का भी आपको बहुत तजुर्बा है, इसको हर चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई चली गई, ख़त्म हो गई, और अब जो है वो एक नई कंपनी जो आई है उस पर भी जो है उनकी अब गाड़ियां हमें हर जगह नज़र आती हैं, और ये भी पता चला है कि कभी वो एक शहर में जाती हैं कभी दूसरे शहर में जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये आपसे इन्फॉर्मेशन, इससे बेहतर कौन दे सकता है, या हमारे थिंक टैंक से तोकीर शाह साहब देते रहते हैं जी शायद।
0: जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब कोई कंपनी, या पहले तो उबर आई, उबर बहुत बड़ी कंपनी है, तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसी की कोई दौर आई नहीं है, सबको पता है। डेनमार्क में जब उबर आई, दो मैं पहले नहीं जाता 2013-14 में, इलीगली तरीके से यहाँ के टैक्सी कानून के मुताबिक नहीं आई थी, 2013-14 की बात है, मैं उधर नहीं जाता, वो लंबी बहस हो जाएगी क्या हुआ फिर वो यहाँ से निकल गए, ये सबको पता है। अब 2025 फरवरी रिसेंटली ऑलरेडी इनकी 2024 के अक्टूबर सितंबर में ऑलरेडी कुछ लोगों के यहाँ से इनके साथ रवाबत हुए थे ऊबर के साथ कि कैसे आपने आना है, ये भी छोड़ दें ये सबको पता है। 2025 फरवरी में इन्होंने बकायदा आगाज शुरू कर दिया ऊबर का, ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी थी छोटी सारी जिसके अंदर गालिबन 40-50-60-70 टैक्सियां थी, यहाँ 100 कर लें, उनके साथ मिलके के छिल खुद कहते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होके आप आ सकते हैं। खाली उबर नहीं की इजाजत नहीं मिली थी उनको, यानी कि इसके गायन उबर, यानी कि बिल्कुल खाली उबर जो है क्लीन उबर सिर्फ खाली वो चलाती, लेकिन उनको किसी किसी किसी कंपनी के साथ सहारा लेके उनको आना पड़ा, और वो आए साथ ही उन्होंने यहाँ पर धूम मचा दी। उधर भी हमारे जो पाकिस्तानी वॉनमैन है, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपनी बात भी करूंगा, वाले साहब रहे हैं सब समेत, जो मैंने सुना, बल्कि सुना अपनी अपने कानों से सुना, लोगों ने कहा ओह कुछ नहीं होता उबर है इसके ये ऐसे, मैंने बड़ी सेल्स कैंपों के अंदर भी सुना, वहां पे भी कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, पाकिस्तानी जैसे स्टाइल है हर चीज में रिलैक्स कर जाए। पता क्या हुआ फिर, उबर ने जनाब इनको ना फरवरी में आई, जून जुलाई में जनाब इनका एग्रीमेंट हो गया सबसे बड़ी कंपनी डैन टैक्सी के साथ, यानी जो पहले कुरियर होती थी डैन टैक्सी, जो पूरे शेलन में है, उसके बाद पूरे यूलैंड में और पूरे स्वीडन में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है। एग्रीमेंट क्या हुआ, उन्होंने खरीद ली, ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली, ये किसी को नहीं पता कितने मिलियार्ड की खरीदी है या कितने मिलियंस की खरीदी है, कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास इनकम है, इन चेक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास एवेओ खून है, यानी कि उनके पास कंपनी के खून छो खिला, उनके पास DSP है, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ये जो होते हैं उनके पास, ये सिर्फ खाली टैक्सी नहीं होती जैसे आप मैंने बुक कराई है, ये तो कोई इसके ऊपर नहीं आपकी कंपनी चलती, इनके पास बड़े बड़े जो है ना आउटशेलिंग एग्रीमेंट हैं डेनमार्क में, खाली कोपना अगर में नहीं है, पूरा शेलैंड उसके बाद यूलैंड और फ्यून सारा बहुत बड़े बड़े कितने मिलियंस की है, 200-300 कपल ऑफ 1300 में मिलियंस की इनकी आउटशेल हैं, वो उन्होंने खरीद ली उबर ने, और उबर ये जो ना पूरी मार्केट तकरीबन वो ले गया तकरीबन। अब क्या हुआ कि 2026 में, यानी कि जून में ये इसकी बाजगश्त हुई ग्रीन SM, यानी कि वियतनाम टैक्सी तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका असल नाम जो है ग्रीन SM है। ग्रीन SM ऑलरेडी जो है ना वियतनाम और चाइना और इंडिया और इन मुल्कों में आ चुकी है 2025 में, और वियतनाम तो पहले की चल रही थी, और ग्रीन टैक्सी ग्रीन SM जो है इसके बाद स्वीडन, इसके बाद जर्मन, इसके बाद ओस्लो, स्वीडन इसी साल जा रही है, और उन्होंने जो मुझे जो मैंने देखा सुना है, उन्होंने ये चीजें कोई फ्री नहीं होती, उन्होंने ये डेनमार्क में हेसल हॉल, यानी कि एवल हॉल जो इंडस्ट्री कुछ है सबको पता है, उन्होंने वहां पर जो बहुत बड़ा ले है, जो इसे स्वीडिश में कहते हैं लॉगर, जो ले है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ 5-6 हजार करोड़ मीटर से ज्यादा कर लें बार भी, वो उन्होंने पहले तो ये समझे थे कि उन्होंने लाया की है, लेकिन जो मैंने पूछा है उधर उनसे, उन्होंने कहा उन्होंने खरीद लिया है, तो हो सकता है खरीद लिया हो, तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो उसके उसी को पीछे से या आगे से तोड़ के तो उसका ब्यूगा करने लगे हैं, तो उसके अंदर उनको काफी जो है ना उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करनी है, एक तो ये हो गया। अब ये 600 गाड़ियां जो है ना, ये इनकी तकरीबन ऑलरेडी 400 या 300 या के करीब ये आधी से ज्यादा गाड़ियां इनकी ऑकुपाइड हो गई हैं, जो चढ़ गई हैं। ड्राइवर इनके तकरीबन 500 से ज्यादा जो है, या 500 के करीब जो है ना एग्रीमेंट बन चुकी हैं। किसी ने सितंबर में शुरू करना है, किसी ने अगस्त में, किसी ने नवंबर में, वगैरह वगैरह। और वो साथ में कोर्स भी करा रहे हैं साथ में। अब किसी कंपनी ने बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्ट की है, वो हाली इन्वेस्ट जो इधर डेनमार्क में किया है, स्वीडन में करने जा रहा है, जर्मन में है, और यूरोप के मुल्कों में करने जा रहा है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि उसके पीछे स्टेट नहीं है? उसके पीछे जो स्टेट है वो उन्होंने थपकी नहीं दी? ये ऐसे कभी नहीं हो सकता। ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मुल्क जो है वो आपको वेलकम ना करें और आपकी हेल्प ना करें, जो जो चीज उन्हें जो जो चीजें उनके चाहिए होती हैं। जैसे कि अब वो भी चाहेंगे कि हमारी हमारी भी औछले हों कमोनों के साथ, फ्लेक्स के साथ, काउंटर खोचले हों, ये वगैरह वगैरह ये चीजें। मेरा ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं और वो ये मार्केट लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे क्यों, लेकिन उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उनको वो लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल है उनके, और वो इसी पे काम करने लगे हुए हैं। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ। आपने बात की थी वोनमैन, पक्षनी, अरबी, तुर्की, डेनिश, जितने भी वोनमैन है, हम अपनी भी बात करेंगे, पक्षनी ये सबसे ज्यादा है। इनका फ्यूचर मुझे कोई अब अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मार्केट उन्होंने लेके जानी है, क्योंकि वो खुद ही वोनमैन है। एक तो ये हो गया कि वो, इसे उर्दू में आप आसानी से ये कह लें कि वो एक ऐप नहीं है ग्रीन एसएम, क्योंकि जो उबर है वो एक खाली ऐप है। वो आप ऐप लेते हैं या उसको आप उसका जो 20% या 18% या 25% उसका आप पे करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी अपनी होती है। मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रीन एसएम है गाड़ियों की अपनी है, वो खुद ही बॉनमैन है और खुद ही वो गाड़ियां भी बनाते हैं अपनी। वो कंपनी, उनकी गाड़ियां भी अपनी ही कंपनी में बनती हैं, और वो कंटेनर के कंटेनर यहाँ यूरोप की तरफ रवाना है, जिधर जिधर उन्होंने ये करना है, पड़ाव डालना है। अब ये जो चीज है, ये मुझे जो शक है, ये वोनमैन की मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्होंने सिर्फ डेनमार्क नहीं, दूसरे मुल्कों में भी जिसे कहते हैं आया है ना, छक्सा आया या वोनमैन, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको अपने पास रखो, अपने कंट्रोल में कर लो। इस तरह की उन्होंने कंपनी को दावत दी है, जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुकी थी। तो उनके साथ ये बमामला जो है, इनके 1-1.5 साल से बैक चैनल चल रहे थे। ऐसे कोई नहीं आ जाता अचानक, ऐसे कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता कहते हैं हेल मलियान या इन मलियाड। और आपको पता है कि जो 400-500 ड्राइवर अभी चढ़े आए हैं, उनको अगले महीने तनख्वाह भी देनी है, और वो तनख्वाह अभी कोई उनकी इनकम नहीं हुई, अभी उनकी औचलें जो हैं चल रही हैं या नहीं चल रही वो बात की बात है, वो तो आपको पता लग जाएगा सबको। लेकिन उन्होंने लोन तो देना है, कुछ लोगों को लोन मिल गया जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई में शुरू किया था काम, अब तो अगस्त का एंड आ गया, तो उनको लोन मिल गया मुझे सुनने में, और उनको पूरा लोन मिला है। मैंने खुद पूछा, मैंने पूछा आपको लोन मिला, उन्होंने कहा जी मुझे लोन मिल गया, जो इस महीने के उनको मिलना था, और मैं जुलाई के, तो वो बहुत से लोगों को मिल
1: इसका
0: गया
1: मतलब है
0: जो।
1: कि ये पैसा सारा सिस्टम में आ गया, इस पर लेफ्ट राइट नहीं हो सकता।
0: मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें, लोन मिला ना, क्योंकि हो एल आर के साथ उन्होंने ये जो जो जो जो के जो लोन जो यहाँ के शनि के लोन नहीं, तनखाओं के जो कानून है, कवानीन है, पेंशन ऑर्डनिंग के साथ उन्होंने मिलके बनाए हैं, कि इसमें कोई हंकी बैंकी नहीं है, उसमें मिलके बना के उन्होंने वो बैठे हैं, उनके साथ बना है सारा कुछ। उसमें ये जो अभी जो पैसे जो इनके चंद 150 जो पहले थे इनके शोफेयर, उनको लोन मिला ना, वो हालांकि उनकी इनकम कोई नहीं हुई ड्राइवरों की, बहुत कम इनकम ना होने के बराबर, क्योंकि उनके ऐप में भी छुआ नहीं है, जो आए वो कल छुआ ही उठा रहे हैं, अगर वो उठाते हैं, और अपने 7.5 घंटों में, 7.5 घंटे उसके, आधा घंटा पौज का, 8 घंटे, 7.5 घंटे में अपने काम करके जो बनाया है वही है, उसके ऊपर वो उनको कोई इतराजात नहीं है इस वक्त। और पहले बाद में भी जब उनके पास ऐप में छुआ आ जाएंगे, जो उनकी औचले होंगी, आपने हर छुए को यस करना है, आपने ना ही नहीं करना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपको वो तनख्वाह दे रहे हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है कुछ परसेंटेज, यानी कि आप किसी को वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वॉशरूम भी आ जाता है या वगैरह वगैरह, 2-4 मिनट के लिए तो आप उसमें पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका आधे घंटे का पॉज एक लगा है, लेकिन जब आपको छुआ आ रहा है आपने यस करनी है, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहे हैं उनसे पक्की, यानी कि फेस्ट लोन ले रहे हैं आप उनसे, तो आप मजाज नहीं है कोई ना करने के किसी छुए के, जब जब ये शुरू होगा उनका बकायदा, अभी तो चल रहा है। और उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोन मिले हैं 170-180 जो शोफेयर पहले के थे वो कितने मिलियंस होंगे, वो उन्होंने अपने जो उनके पास जो उनका अकाउंट या जो भी वो पैसा लेके आए हैं अपने पास से दिए हैं। मैं ये बता दूं कि अपने पास से कोई नहीं देता, ये तो अभी दिए हैं जब उनकी औचलें वगैरह चल जाएंगी, जब उनके साथ कमोनों के साथ या जिधर भी वो करना चाह रहे हो जाएंगी। कितने वो मिलियंस की इतनी कमोने हैं, सैकड़ों कमोने हैं यहाँ पर शेलन में, जब उनके साथ हो जाएंगी, अगर आदियों के साथ भी हो जाए जब हो जाएंगी, तो फिर ये जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया, ऐसी जो जो बिजनेसमैन काबिल बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फिर उनका वापस डबल से ज्यादा वापस आएगा। तो ये है उनकी जो है प्लानिंग।
1: इसका मतलब है उन्होंने
0: और
1: अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सबसे पहले सेव किया है, गवर्नमेंट के साथ जो है अपनी बातें कमून के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं जहाँ से ये सिस्टम चलता है, अब वो जो है कोई पैसा जो है वो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कंपनी का।
0: देखिए जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसी को उन्होंने नहीं बताया, यहाँ पर किसी मीडिया को नहीं बताया कि अभी फिलहाल बहुत से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आए, किसने कौन इनके पीछे है, ये सिर्फ क्यास रही हैं। लेकिन जो आदमी आप जैसा और यहाँ पर सब लोग अकल, आप जैसे लोग अकल बोझ रखते हैं कि ये तो खुद भी सोचे ना कि जब आप एक दिन 10 दिन 1 माह 1.5 माह हो गया आप देख रहे हैं, तो फिर पता आपको लग जाता है, जब आप अंदर भी जाते हैं पूछते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको ये पता लग जाता है कि ये इसके पीछे स्टेट इन्वॉल्व है, वो साथ है। ऐसे ही दूसरे मुल्क में आप अपना, मैं अगर बिजनेस लेके जाऊं, मैं कहूं जी मेरे पास है 1 मिलियन 1 बिलियन डॉलर है, मैं यहाँ बिजनेस, आपकी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपकी स्टेट करेगी, वो कहेगी पैसा आ रहा है, आपकी मदद करेंगे, आपको जो जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे आपके वगैरह वगैरह। तो
1: फैसिलिटेट किया जाता है। चलिए शायद आते हैं
0: इसी तरह
1: आप
0: बिल्कुल
1: इसी तरह जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, पार्टियों में किस तरह लड़े जाते हैं, ये जो कारोबारी लिहाज से जो लोकल ये टैक्सी चलती है इसका क्या सिस्टम होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें चली जाती हैं। शायद हमारे मुल्क में जहाँ भी पूरी दुनिया में हमारी सियासी पार्टियाँ सारी खुद कफील हैं, पूरे मुल्कों में उनकी भी टैक्सियाँ वहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ ये जो पार्किंग प्लेस हैं सारी पार्टियाँ ये पार्किंग प्लेस हैं, ये सियासतदानों की टैक्सियाँ हैं, इनकी जो है वो पार्किंग की जगह है। ना कोई हमारा मेंबर बना पार्लियामेंट में, कोपनहेगन की बात करूँगा, अगर डेनमार्क की बात करूँगा, स्वीडन में आप देखते हैं हमारे कितने मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के बनते हैं, तो कहीं भी हम फिट नहीं हो रहे। अब पाकिस्तान की सारी चीज़ों को मिला के देख रहे हैं तो लेकिन ज़्यादा सियासत जो है वो पाकिस्तान की जाती है, आप किस तरह देखते हैं सियासत को पाकिस्तान को?
0: मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपने स्वीडन के इलेक्शनों की बात की थी और डेनमार्क के, मैंने यही बताया है कि जब तक आप अपनी मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है, अगर ये कोई किसी को अगर गलत लगे, मैं उसे माजत कर लेता हूँ, इस क्योंकि सामीन सुन रहे हैं यार, पाकिस्तान की सियासत आपको सबको पता बहुत गंदी सियासत है। वो गंदी सियासत को वो कहते हैं समझने के लिए हजारों साल भी कम है, तो वो क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तो हर सेकंड बाद बदलती है, वो सियासत उन्होंने आई। तो आप जब उस सियासत को, मैं ये बता रहा हूँ, इधर जहाँ रहते हैं इधर भी करेंगे तो फिर यहाँ पर आप अपना अपना ही मजाक बनवा लेंगे। लोग मजाक करते हैं देख के, ये कोई खुशी नहीं लोगों को हो रही होती, देख रहे होते हैं सारे लोग, से मुराद है कि पक्षनी भी और दूसरी नेशने भी, किसी को खुशी नहीं हो रही होती, वो आपको देख के हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं मस्करे सारे। मैं आपने बात की पक्षनी जो सियासत करते हैं यहाँ पर यूरोप में, मैं हाल ही डेनमार्क की बात नहीं कर रहा, तो वो फिर जब आप इस तरह के मस्खरापन करेंगे लोगों ने, तो आप लोगों में, आप कम्युनिटियों में, दूसरी कम्युनिटी में मजाक बनाएंगे। ये जो डेनिश हैं, स्वीडिश हैं, नॉर्वेजियन है, जर्मन, जहां भी चले जाएं वो आपको देखते हैं, ये नहीं कि उनको सारा पता होता है, वो ये लोग खामोश तबीयत के हैं, खामोशी से सारा कुछ करते हैं, ये बातें नहीं ज्यादा करते, जनरली बात करता हूँ, इनमें भी लोग बुरे होते हैं लेकिन इनमें भी लोग होते हैं इस तरह के, लेकिन वो जनरली ऐसे नहीं है ये लोग, ये लोग बातें नहीं करते, ये काम करते हैं। ये नहीं है कि इन मुल्कों में ऐसा नहीं था, इन मुल्कों में गंदी सियासतें नहीं थी, इन मुल्कों में जबरियत नहीं थी, फिरौनी 100 साल पहले ऐसे ही था, 100 साल पहले ये इन्होंने ये सिस्टम जो है ना, लड़ लड़ के कौमों ने, इनकी कौम लड़ी, इनके लोग लड़े, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इनके लोगों ने, हाली जंगे नहीं लड़ी इन्होंने एक दूसरे से, इन्होंने सियासी, ये जो सियासी इसके लिए जमहूरियत के लिए लड़े, यहाँ तो बादशाह थी पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप में बादशाह थी। पूरे आपको पता है, आप हिस्ट्री पढ़ें जाके, स्वीडन की बात कर लें, डेनमार्क की बात करें, यहाँ तो जुल्म था। यहाँ ये बादशाह होती है ना, जुल्म ही होता है। ये एक बंदा सबको कह रहा है जो मैंने कहना वही आपने मानना है, इधर ऐसे था। लेकिन फिर यहाँ कौमें लड़ी, लड़ने के बगैर आप, कुर्बानियों के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही बादशाह के सारा था कब्जे में। बादशाह जो है यूरोप का, यानी कि स्वीडन का या नॉर्वे का, उसके उसके तो इंसाफ वही करता था। जज जो है वो इंसाफ जिस उसने करना है वो बादशाह के हुक्म पर उसने करना है, तो काहे का जज। इधर ऐसे था। फिर ये लोग लड़े, इन लोगों ने कुर्बानियां दी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल लड़ते रहे, आखिर में ये इनकी जीत हुई। घर बैठने से, हाथ में हाथ बांधने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मसखरापन, फजूलियात, ये चीप हरकतें, यार ये क्या है, क्या हो आप? जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलोगे, आप ऐसे ही रहोगे जैसे 1400 साल पहले मैंने सुना था कि जहलियत है। आप उससे भी आगे निकल जाओगे। 1400 साल की जो जहलियत सुनते थे ना, वो कुछ भी नहीं है, उससे भी आगे निकल जाओगे, बल्कि निकल गए हो। तो ये है कि आप इन मुल्कों में रह के इन कौमों से जब नहीं सीख पा रहे, तो यार फिर तो मैं क्या उसके ऊपर करूं तबसरा, मजीद तबसरा ही पे रह जाते हैं।
1: तबसरा क्या, आप देखें ना, मुनाफिक आदमी जो होता है जिसके मुंह पे होता है उसी का होता है, वो उठ के चला जाता है दूसरे पे चला जाता है, तो यही सियासी पार्टियों का है।
0: यही हमारे हमारी जो कौम का, हमारे जो सिस्टम का अलमिया है कि आप देखो क्या कर रहे हो। मैं गालिबन ये चीजें देखता रहता हूँ, कभी देखता हूँ इधर इधर इधर स्वीडन का भी, चलो बात कर लेता हूँ यार। स्वीडन के अपने मुल्क की जहाँ रहता हूँ मैं, जी फोटो लग गई है, एम्बेसी के पास बैठा हुआ है, एम्बेसी को अलविदा, अलविदाई, अगर मेरे से उर्दू अलविदाई, उसको सलाम पेश कर रहा है, फोटो लगा दी है। यार क्या हो गया है, यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यूरोप के जो एम्बेसडर उधर गए होते हैं दूसरे मुल्कों के एम्बेसी में, पता ही नहीं किसी को था कब आ गया क्या ही नहीं। वहां के जो उधर के लोग हैं जिन मुल्कों में, स्पेन में डैनिश रहते हैं, पता ही किसी को डैनिश को नहीं है। स्पेन में डैनिश रहते हैं ना, अमेरिका में डैनिश रहते हैं, उधर एम्बेसडर है ना उनके, आते हैं, किसी को पता, देखिए किसी किसी किसी डैनिश की फोटो, आम शहरी की, एम्बेसडर को सलाम कर रहे जाके, फोटो लाती फेसबुक पे, हाय यार देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्या कर रहे हैं, कभी हो गया यार, चले गए हो आप कोई अपने काम से, उन्हें क्या फाड़ के लाती, चलो जी हो गए सलाम, जराना पेश, वो तू कौन है जराना, तू कौन होना है जराना पेश करने वास्ते, जोहराना, ये अगर उर्दू मेरी गलत है तो जोहराना इसी को कहते हैं ना खाने को, राजा साहब जोहराना जी आपने पेश कर दी है,
1: बिल्कुल
0: मास्टर
1: ठीक
0: जा
1: बोल
0: रहे
1: रहे
0: हैं
1: हैं,
0: वहां
1: बिल्कुल ठीक बात
0: यार।
1: है, बड़ी अच्छी
0: ये कोई
1: बात है,
0: बात,
1: आप पैदा
0: ये
1: यहाँ
0: कोई
1: हुए हैं,
0: बात,
1: उर्दू बोल रहे हैं।
0: ये कोई बात है करने वाली यार, ये मैं देख के रहा होता हूँ, फोटो लग गई है यार, इन चीजों से निकल आओ। एम्बेसडर आया एहतराम के काबिल है, जा रहा है, खत्म हो गई बात, पैसे हमारे हैं, खजाने से निकल रहे हैं, तू कौन है जोहराना पेश कराने वाला नो। इस तरह आपके मुल्क में ना जो ये ना ये काम खराब हुए हुए हैं, नीचे दिखाने के लिए दूसरे को।
1: इसका हल क्या है,
0: मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं
1: इसका
0: कह रहा
1: हल
0: कि मुझे कोई
1: बताएं,
0: कर
1: हल
0: सके।
1: क्या है? आप चूंकि यहाँ पैदा हुए, आप उर्दू भी
0: मैंने
1: बोलते
0: अभी
1: हैं,
0: इसका
1: स्वीडिश भी
0: अभी
1: बोलते हैं,
0: अभी
1: डेनिश भी बोलते हैं, इंग्लिश भी
0: मैंने
1: बोलते
0: अभी
1: हैं।
0: मैंने आपको अभी इसका हल बताया है। जब तक आप दूसरे कौमों की तरह, दूसरे जो लोग हैं और भी है ना, उनकी तरह मुनज़म नहीं होंगे, लेकिन इन्हें मुनज़म होना नहीं है, मुनज़म नहीं होंगे, आप ऐसे ही रहेंगे। आप ही आपने खुद ही कहा है, मैं मुनाफ़कत, हाली मुनाफ़कत नहीं है, झूठ, मुनाफ़कत, मकारी, तीन चीजें। मकारी आपके मुंह के ऊपर नजर आ जाती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है कि ये मकार आदमी, मुनाफ़कत तो है ही है, मकारी सबसे बड़ी चीज है, फिर झूठ, ये तीन चीजें। आप मेरा वो डीपी
1: ये
0: देखें, बड़ा
1: शायद एक
0: मशहूर है मेरे।
1: बात याद रखें कि पिछले दिनों बहस हो रही थी कि बीमारियां होती हैं ना, एक मालिया खौलिया की बीमारी होती है, हम इसी को लेते हैं, कोई जहनी मरीज किसी को कहता है, लेकिन और भी बीमारियां हैं, अगर देखा जाए तो बंदों का कसूर भी नहीं होता, वो चूंकि वो
0: बिल्कुल नहीं
1: बीमारियां
0: होता।
1: उनको लगी होती हैं, आप उनका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए
0: अभी
1: साइकाट्रिस्ट
0: आप
1: जब बैठता है ना, वो उसको घंटा घंटा, दो दो घंटे टाइम देता है, खाली उससे बातें करते रहते हैं, वो जहनी मरीज इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इसको ये बीमारी है।
0: राजा साहब, अभी आप को आप मेरी वो डीपी जो है ना उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो काइंडली वो डीपी जो है मेरी, उसका जो सामने जो मेरा वो है जरा उसको पढ़ें, अभी पढ़ें तो, ताकि आपको मैं बताता हूँ क्या है वो।
1: बड़ी अच्छी बात है और आप अक्सर बात इस पर करते भी रहते हैं। लिखा हुआ है आपकी जो शराखत है जो आपने अपने लगाया डीपी लगाया हुआ है, मुनाफ़िक़ दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह पे ऊपर दोस्ती का नाम है। ये तो एक ऐसा
0: यस
1: खूबसूरत अल्फाज हैं, शेर लिखे हैं, ये सबके लिए, ये किसी की मुखालफत में नहीं है, किसी के हक में नहीं है।
0: ये चीज, जब ये चीज आप खत्म कर देंगे ना, ये जो कौम है पूरी, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है मुश्किल काम है हमारी, खासकर कौम हम लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये जो मैंने अभी अब लिखा हुआ है ये सारा, तो आप जो है ना राह रास्त में आ जाएंगे। लेकिन मुश्किल और कठिन है, ये नहीं पता कब है, शायद 100 साल लग जाए, 100 साल बड़ा, शायद 1 साल में खत्म हो जाए, लेकिन 100 साल में पता नहीं, हम रहे, हम तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो 100 साल किसने देखा है। लेकिन वैसे भी ऑलमोस्ट हमें
1: आप
0: 78 साल
1: देखें
0: हो
1: ना,
0: गए हैं।
1: इस जमहूरी निज़ाम में अब हम जमहूरियत की भी नफ़ी करना शुरू हो गए हैं, ये भी प्रोपगंडा हम लोग शुरू कर देते हैं। इस जमहूरी निज़ाम रहते हुए अगर आपको वोट मिले, आप मेंबर बन गए, आपको वोट मिले तो अभी रीजन के मेंबर मिल गए, अगर आपको वोट मिले हैं तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पार्लियामेंट को आप वोट मिले तो आप वज़ीर आज़म बन गए। ये तो एक जमहूरी निज़ाम है, कौन किसी को रोक रहा है?
0: कोई किसी को नहीं रोक रहा है। और राजा साहब एक और बात, जब आप इलेक्ट हो गए आते हैं ना, अवाम आपको सिलेक्ट करती है, तो फिर इलेक्ट हो गए हैं आप, तो आप उसमें आ गए हैं, तो जब आपने किसी वध में, ये इधर की बात कर रहा हूँ अपने यूरोप की, तो हमारे जो ओवरसीज पक्षनी है, भाई हैं, बहने हैं, तो वो जो वादा करते हैं ना, वो फिर अपना वादा 100% नहीं तो कम अज कम 80-90% पूरा किया करें अपनी अपने अपने क्या कहते हैं वोटरों के साथ। ये मेरा बार बार कहना है। तो मैं आप वाली बात फिर, जब तक आप अपने सारे ओवरसीज पूरी दुनिया में, जब तक आप पक्ष नहीं, गंदी सियासत, गंदी तरीन सियासत है, अच्छी सियासत भी लोग करते हैं, लेकिन गंदी तरीन सियासत को आप खत्म नहीं ना करेंगे, आप तरक्की भी नहीं कर सकते किसी चीज में। यूरोप में भी पीछे रह जाएंगे, हर एक से, हर महाज में पीछे रह जाएंगे, नहीं कर सकते तरक्की। ये क्योंकि यही अल्लाह ताला का सूल है, यही कानून है। अल्लाह ताला के सूल और कानूनों को तो नहीं आप रद्द कर सकते ना। अल्लाह ताला तो देख रहा है हर वक्त, अल्लाह ताला तो आपको लम्हा लम्हा देख रहा, सुन रहे, उसके साथ तो नहीं ना आप कहते हैं मकारी यारी कर सकते, यारी भी तो करते हैं ना हम लोग।
1: देखिए ना, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया क्या वो काम हम करते नहीं है?
0: हम वो काम नहीं करते, अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया हम वो काम करते हैं, अल्लाह ताला के रसूल ने जिन चीजों से मना किया वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये दीन को भी इस्तेमाल करते हैं यार, दीन को भी, दीन भी आज कुरान भी आपको आज कल पैसों में बिकता है, दीन भी आपका बिक रहा है पैसों में। यानी कि सुबह दीन को इस्तेमाल करता है, रात को शैतान बना होता है बंदा, वही दोबारा सुबह या रात को शैतान है वो पूरा। सुबह वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है, टोपी पहन के अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो क्या खत्म हो रहे हैं यादमी शरीफ के फलां जगह, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार दीन को तो ना इस्तेमाल करो, फिर अपना दीन आप अपने पास छुप के अल्लाह के साथ करो, इसका चर्चा ना करो। ऐसे चर्चा वो करते हुए अच्छा लगते हैं जो माशरा सुलझा हो, जिसमें कोई हलाकियात हो, जिस माशरे में, हलाकियात नहीं, वो अपने दीन का क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि उसने तो अपने आप से शुरू करना है। मैं कैसे चर्चा करूं अपने दीन का, हमारे हमारे हमारे मुल्क में चले ले लेते हैं, कोई हलाकियत ही नहीं है, बेहयाई ऊपर उधर उरूज पर, उस पर बात करेंगे तो हंसेंगे आगे से। ये तो यार आप क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, यहाँ तो ये तो आम हो गई है चीजें यहाँ पर।
1: आपने
0: आप
1: मुफ्ती कवि कितने देखे हुए हैं पाकिस्तान में?
0: क्या अब मैं क्या बात करूं इनके ऊपर।
1: ये देखिए, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, शायद ये देखें, ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए ना, ये अब सवाल करते हैं, जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ को देख रहे हैं तो सवाल करते रहे, मुनाफ़िक़ की बात करते हैं। आपने लिखा हुआ है कि मुनाफ़िक़ दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और छुपा के नहीं कर रहे। आप देखें ना, मुनाफ़िक़ क्या होता है, कई दफ़ा आपने इस पर जो है प्रोग्राम किए, कई दफ़ा उलमा ने इस पर बात की। अल्लाह ताला कहता है कि जो मैं मुनाफ़िक़ को माफ़ नहीं करूँगा, जो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है उसको माफ़, जो मेरे साथ किसी को जोड़ता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूंगा। जन्नत दोज़ो किस लिए बना हुआ? जन्नत दोज़ो को मजाक तो नहीं है? जन्नत दोजख बनाए गए इन्हीं वजह से बनाए गए हैं, तो ये सजाएं मिलेंगी। वो कोई बंदे कहते हैं जी बस एक बार पढ़ने से 10 हज का सवाब हो जाता है, फिर हज का सवाब पढ़ने का हो जाता है तो खाना काबा में क्यों जाते हैं, आज उधर हज करने के लिए क्यों मक्का मदीना जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें
0: मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो।
1: जी जी,
0: एक तो ये चीजें है ना, अगर आप मेरी अगर लोग दोस्त यहाँ पर जो सुन रहे हैं सामीन वो इसको समझेंगे, आप भी समझेंगे। एक तो हमारे में ये बहुत ज्यादा है, एक इसको मुनाफ़िकत ही कह लें, तल्लुकात की बेस पर यानी कि तल्लुकात बनाते हैं। यानी कि यार आपको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पता है आपको सच क्या है, लेकिन आप तल्लुकात की बेस पर आप वो सच को जो छुपा रहे हैं, यानी कि उसे मुंह फेर रहे हैं। यानी कि मैंने ये पढ़ा था, अगर गलत ना हो जाए क्योंकि मैं ये कोड यहां गलत नहीं करना चाहता, किसी हदीस में पढ़ा था कि किसी सहाबा ने फलां मैं यहाँ गलत ना हो जाए क्योंकि मैं मेरे पास ऑफिस में नहीं हूं, मैं देख नहीं सकता, पूछा कि आपके पीछे तो आप अकेले रह गए हैं, उधर तो 1000 बंदा खड़ा है। उसने कहा अल्लाह ताला के अकामत के खिलाफ अगर 1000 बंदा भी हो जाए मैं अकेला रह जाऊं तो मैं सच के साथ ही खड़ा होऊंगा। ऐसे ही है ये लोग पता क्या करते हैं, वो यार वो तलुका ही कोई नहीं, वो जानते ही कोई नहीं, ये साढ़े नाल भी 1000 बंदा 100 बंदा 200 बंदा खलोता था, ऐसे बात करते हैं ये ऐसे हम लोग हो गए हैं। यानी कि तलुकात की बेस पर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो गलती सही है चाहे मैं गलत हूं। आपको पता है
1: पढ़ते रहते हैं सारी चीजें, आपको पता है
0: आपको पता है कि जो बंदा कोई भी हो दुनिया में आपने तारीख पढ़ी है, जो सच की बात करेगा उसके उसके उसके दुश्मन होंगे सिर्फ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा ना उसके दोस्त होंगे, यही अल्लाह ताला को पसंद है।
1: आप देखें जब बात की जाती है ना कि सारी दुनिया में आप देख लें कि बाद जगह आपको पता है कि गुलाम खरीदे जाते थे, मंडियां लगती थी, उनकी कीमत दी जाती थी, ठीक है, गुलामों में भी किस्में होती थी कितनी कीमत का गुलाम है कितने में, और दूसरा गुलाम दूसरे को बेहतर मिलते थे, मालिक गुलाम को बेच देता था, ये हमने सब पढ़ा। लेकिन हम 2026 में रह रहे हैं, यहाँ भी गुलाम बिकते हैं, सियासी गुलाम।
0: देख लें आप, 2026
1: तरीका होता है ना, यहाँ भी हम यहाँ की बात करते हैं डेनमार्क की, इनका तो आइन है कानून है, हमें इत्राम करना चाहिए, ये कानून के अंदर रहते हैं कानून के नीचे रहते हैं, इक्वल राइट्स की ये हमायत करते हैं, शादी की इजाजत है, तो क्या मुसलमान खरीदते नहीं है जाकर, उनके गलों में हार नहीं डालते?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की आपने,
1: तो ये बहुत सारी चीजें हम रियलिटी से पीछे हट जाते हैं, हम अपनी तसल्ली करने के लिए भाई यहाँ का कानून है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका आइन में इसको जो है उस पर लिखा हुआ है, तो हमें क्या कि जिस मुल्क के हम किसी के मुल्क के आइन की मुखालफत कर सकते हैं, रहते हैं हम ये डेनमार्क में, सियासत हम पता नहीं कहाँ की कर रहे होते हैं, आप बंदे हमारे यहाँ आ जाते हैं, जो आप मैं भी वो जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, बहुत सारे आलम बन जाते हैं, सियासी आलम बन जाते हैं, हम एक दूसरे के पीछे बैठे हुए गाली निकाल रहे होते हैं, और मुझे कितने लोगों ने सबूत दिए, मुझे शर्म आती है, वो सुन के भी शर्म आती है, यार ऐसे भी लोग हैं। फिर जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो अब मेरा यकीन हो गया कि ये बीमारी एक किस्म की ज़हनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, या ज़हनी मरीज एक बीमारी नहीं होती, ये बहुत सारी बीमारियाँ, ये ठीक ही नहीं हो सकती। जो आपका दोस्त आपके पीछे बैठे आपको गाली निकाल रहा है, वो आपका दोस्त अब बीमार आदमी है। वो
0: देख लें फिर राजा साहब क्या चल रहा है, अब आपने खुद ही इसकी सारी तशरी कर दी है, तो मैं
1: शायद आप इजाजत लेते हैं, आप भी मुझे पता है मैं तो आप ऑफिस में मौजूद नहीं,
0: आप कोई नहीं बात करें, मैं कोई ये भी नहीं अब कह सकता कि इनको हदायत दे, कितनी बार कहूंगा या कितनी बार कहेंगे हम आपस में एक दूसरे को, हमें हदायत दे सबको हदायत तो अल्लाह ताला ने, तो मुझे लगता है आपको पता है मेरे ये पढ़ा हुआ है कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाने एक दिन अचानक ही, तो मुझे तो लगता है कि इधर तो तौबा के दरवाजे पहले ही बंद हो गए हुए हैं इधर हमारे ऊपर इस कौम के ऊपर, कि तौबा ही कोई नहीं, कोई दुआ ही नहीं कबूल हो रही, बता दें कोई दुआ कबूल हुई हो, दुआएं करते हैं ना सारे, हमारी माँ बहने बेटियां सब कर रही हैं, मुल्क के ऊपर भी कर रही हैं, सबके ऊपर के हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, कोई हो कोई दुआ कबूल हो रही है, मुझे ही लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे, अल्लाह ताला नाराज है बड़ा सख्त, अकल भी तो काम करती है ना, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने उर्दू के साथ इंग्लिश के साथ, उसको तो बार बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। उसमें अल्लाह ताला ने यही चीजें फरमाई हुई हैं कि मैं मेहरबान हूं नहायत। अब अपने इंसान के ऊपर बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला, बहुत प्यार करने वाला है इंसान को। तो अल्लाह ताला ये वो कहता है कि उसको हो जाता है कि मैं अपने इंसान को कोई ना पहुंचाऊं, चाहे वो जितना मर्जी जालम भी हो, कर देता है। शिर्क नहीं माफ करता अल्लाह ताला किसी को जो उसके अगेंस्ट आ जाए कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात ये अय्यारी मकारी और झूठ और मुनाफकत, तो देख लें आप
1: शायद
0: हम
1: मैं ये
0: कितने
1: कहता कि
0: हम
1: लोगों ने एक अपना बनाया हुआ है ना। अब यहाँ जितने भी मेले हुए हैं, जितने भी, और इसमें कामयाबी का राज क्या था? मैंगो फेस्टिवल, उसमें आम लगे हुए हैं, लोग जो है वो जा रहे हैं, ख्वातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं, कहीं सहूलियात ज़्यादा हैं, कहीं सहूलियात थोड़ी हैं। जो मैंने एनालाइज़ किया है कि लोग दिनों पर नहीं जाते, लोग स्टालों पर जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा साबित हुई हैं।
0: बिल्कुल इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि लोग यहाँ पर कोई छोटी मोटी इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इस तरह की इंटरटेनमेंट जो हटके, दूसरी चीजों से हटके जो की है स्टॉलों में कर लें। मैंगो फेस्टिवल एक, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान का भी, लगता है पता कि ये पाकिस्तान के आम है। इधर अंग्रेज लोग भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, मैंने देखे हैं। बहुत से लोग पता लगता है ये पाकिस्तान के आम है, और कईयों को नहीं पता, फिर पता लगता है ये खासकर डैनिश लोगों को आते हैं। और फिर इस तरह आप जो है ना, आपकी मशहूरी होती है इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें उसे आप हट जाएं। ये बाकी सबके अपना अपना है, एक राय है ना मशवरा है ना
1: जमहूरी
0: किसी को
1: मुल्क है, हर
0: हर
1: आदमी का हक है, उसे हक है, जो यहाँ
0: आपके।
1: बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, जहाँ कानून ने इजाज़त दी है कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
1: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाज़त देता है, तो खुद भी कुछ चीज़ें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूँ, उसका दिल हार्ट होगा, तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
0: यहाँ पर मैं ये बात कहते चलूँ, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खास कर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल रहे हैं। जो हकामात आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दीनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं, कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है, तो लिहाजा हैं लोग, शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्कों में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या
1: शायद
0: करते हैं,
1: मैं
0: आपको
1: पता नहीं बात
0: नंगा
1: करने
0: करके,
1: लगूं,
0: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको। इधर
1: शायद
0: जब
1: मुझे
0: आप
1: बात
0: इस
1: में करने लगूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है, क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
0: बिल्कुल
1: ठीक है, वो मंशूर था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: कोड हम करते हैं? इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
0: नहीं हम उस मंशूर को कोड करते हैं या उसको हर अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
1: सही बात, सही बात। तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपने कीमती टाइम दिया, मुझे पता है काम करने वाले का बंदा कितना कीमती टाइम होता है, छुट्टी का दिन है, तो ये छुट्टी के जो दिन होते हैं हमने 35, 36, 40 साल के करीब जो है अपनी आवाम के लिए दिए हैं। आज आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी छुट्टी है, वो तो गाड़ियों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे, वो तो बड़े इन्जॉय करते हैं। मैं भी जब बैठता हूँ कभी गाड़ी में, कभी दोस्तों के पास, तो जब कोई प्रोग्राम लगा हो तो मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ।
0: राजा साहब, मैंने मैंने चले थोड़ी मजाकन बात भी कर लें। मैंने तो आपको छुट्टी पर ही देखा है, 25
1: आप
0: आ रही
1: देख लेना, जो कहते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है, जो मजाक की तरफ, हम जब मजाक पे आते हैं,
0: हाँ।
1: जिन लोगों ने काम किया होता है उन्होंने किया होता है, किसी ने भी किया, अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है लेकिन उसने जिंदगी में कोई काम किया हो, तो उस काम की तो बंदा जो कहता है यार इसने किया हो, बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसने काम तो किया हो, ये एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गीबत की तरफ चले जाते हैं, मुनाफ़त की तरफ चले जाते हैं।
0: अगर जैसा अगर कल को फर्ज करें मुझे कोई शील्ड मिल गई है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं कोई छोड़ेगा इतनी इसको शील्ड क्यों मिली है। ये है इधर जो कौमे है ना, ये इधर की जो है
1: नहीं
0: जाम
1: नहीं
0: रहते हैं इन
1: उसमें चंद
0: माशरों
1: लोग होते हैं, देखिए ना कहते होते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या मछली तालाब गंदा कर सकती है? क्या
0: में। नहीं मछली तो
1: मछली
0: नहीं कर
1: मछली नहीं तालाब गंदा कर सकती? वो कहते हैं एक मछली,
0: जे?
1: इसकी वजाहत है। इसी तरह चंद लोग होते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और उस पे जो है ना उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। हर इंसान को अपनी खूबी का भी पता है, खामी का भी पता है, दोस्ती का भी पता है और दोस्ती ना होने का भी पता होता है, मुनाफ़त का भी पता है, लेकिन ये चंद लोग होते हैं, शायद इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं, बहुत यहाँ सादे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं, ये बच्चे बड़े मासूम हैं, इनकी तख्तियों, ये बच्चे पैदा होते हैं, इस तख्ती पर कुछ नहीं लिखा होता, ये हम इनकी तख्ती पर लिखते हैं और उसके बाद बच्चों को ख़राब कर देते हैं। बच्चे जो है यहाँ पैदा, बच्चा कौन पैदा होता है उसके माथे पर लिखा होता है कुछ? कुछ भी नहीं
0: नहीं,
1: लिखा होता।
0: बिल्कुल
1: आप अजान देते हैं, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो अजान क्यों देते हैं आप? बच्चा है,
0: बिल्कुल
1: अजान दी जाती है, इसी तरह क्रिश्चियन है वो उसको अपने निज़ाम से करते हैं, दूसरे मजाहब हैं वो अपने निज़ाम से करते हैं, तो मैं तो सब मजाहब की जो है इज्जत करता हूँ शायद।
0: जी, और यही ऐसे ही करना चाहिए यहाँ पर रह के। अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती हैं तो फिर यही है, आपको डैनिश कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप नहीं इनके कानून के मुताबिक चलना चाहते, सऊदी अरब में चलते हैं ना इनके कानून के मुताबिक, वहां कितनी सख्त सजाएं हैं, वहां तो आप चुप करके सर झुका के चलते हैं। जो उधर लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हैं, जो कौमें वहां काम कर रही हैं, तो इधर आप क्यों जो है इनकी वायलेशन करने की कोशिश करते हैं आप मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि इसमें कुछ लोग करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये इन्होंने शिकंजा जो है ना टाइट किया हुआ है और कर रहे हैं इधर, और मजीद जो कानून लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं, चाहे कोई भी है, तो आपको भी पता है इस बात
1: चलें,
0: का।
1: शायद जो नए कानून आ रहे हैं इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाज़रीन, ये थे शायद नसीम जो के आपसे बात कर रहे थे। सामान, हमारी बात जो होती है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, हमारा किसी से मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, आप अभी बात करना चाहते हैं आप अभी बात कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: लुबना इलाही साहबा जो कि बहुत पुरानी सिटी काउंसलर रही हैं, बड़ी एक्टिव हैं, अपनी जिस जमात के साथ इनका तल्लक है उस जमात से बड़ी एक्टिव हैं। ये किसी जमाने में भी जो है सोशल डेमोक्रेट पे भी इनका जो है वो तूती बोलता था, लेकिन अब अपनी ये सियासत करती हैं, अपने तरीके से सियासत करती हैं और एक्टिव रहती हैं और जो है वो अपनी जो है एडवाइस भी देती रहती हैं। बेसिकली ये स्कूल टीचर हैं। लुबना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ चौधरी शकोत साहब और कामरान है, इलेक्शन में कामरान जा रहा है स्वीडन में।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम और सुनने वालों को भी सलाम।
1: जी वालेकुम सलाम लुबना
2: जी।
1: छोटी सी तमीद बांधी है, हमारे साथ चौधरी शौकत साहब भी हैं और कामरान अनवर भी हैं। तो ये इलेक्शन हो रहा है सितंबर में स्वीडन मालमो में, तो यहाँ भी लोग दोनों तरफ, चूंकि यहाँ भी उनका स्वीडन में भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है, तो यहाँ से लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो एज ए सियासतदान आप क्या वो क्या कहती है, इनको क्या तजावीज देंगी?
2: मैं तो राय साहब आपको पता है हमेशा की तरह ये कहती हूँ कि आपसे वोट डालना है, जब आप वोट नहीं डालते तो जो वो एक बैलेंस खत्म हो जाता है। जो लोग हमारी बर्बादी चाहते हैं वो तो वोट डालते ही हैं, और हम लोग घर में भी बक बक झक झक करके गुस्से से वोट नहीं डालते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ डालें। अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आपको बोलने का भी हक हो ना। जब आप वोट नहीं डालते तो फिर एतराज करने का भी हक नहीं। मेरी तो यही होगी, और कामरान कोई अननोन शख्सियत नहीं है, काफी अरसे से अपने हम वतनों के लिए स्वीडन में काम कर रहा है। मैंने तो हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सुना है, तो अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे।
1: तो लुबना यहाँ की भी बात कर लें, यहाँ भी बड़े काम हुए और काम होने जा रहे हैं, यहाँ भी किसी टाइम भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन तो अपने टाइम पर होते हैं, तो यहाँ कम्यूनों में क्या हो रहा है?
2: आपको मेरी पेशन कोई याद नहीं आई कि मैंने कहा था ये अपना टर्नोल हुकूमत नहीं निकालेगी। अभी देखे जो पहला एतराज जो है कि जो के जैसे रेडिकल वेंस्टर के लिए नो गो है, वो ये है कि जो शरीयत की कमेटी है, इंफ्यूज़गास की कमेटी, वहां पे उन्होंने जो लोग काफी अरसे से शरीयत

0: गिमनेजियम है, तो वहां पे कुछ बच्चों ने हमाकत है कि वो कहा कि लड़कियों को कहा तुम ये क्यों पहनती हो, वो क्यों पहनती हो, तो ये उनका काम नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए उनके वालदैन हैं और वालदैन ही को फॉलो करना, क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि बच्चे वालदैन के हैं, सिस्टम के नहीं। तो जी वो इनका था कि उस जिमनेजियम को ही बंद किया जाए ना, तो अभी वो जिमनेजियम के बाद खड़े होके ये कह रही है कि मुसलमान ऐसे हैं। तो मैंने कोपेनहेगन कमून को लिखा है कि वो कोपेनहेगन कमून की इंस्टीट्यूट है, तो इसके ऊपर कानूनी पाबंदी लगाए या कोई भी हो कि किसी इदारे के बाहर अगर खड़ा होके कोई इस्लाम की बात नहीं कर सकता, तो ये जो बकवास कर रही है इसको क्यों इजाजत है? अब देखे क्या जवाब देती, क्योंकि ये एक इश्तियाल अमेज हरकत है। ये अपने जमाने में खान यस पसंद कर चुकी है, वो टैक्सी पकड़ के ब्लॉगर्स प्लेस पे आती थी, दुनिया जहां की ओल फोल बकती थी, जिसका नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। बच्चे जज्बाती होते हैं, जब वो उनको खड़े होकर बाहर गालियां दे रही है, उनके मजहब को गालियां दे रही है, तो वो क्यों ना उसका जवाब दे, कोई लॉजिकल बात करे ना। उनका ये जो जो कुछ भी गिमनेजियम में हुआ है वो उनका एक ये कह सकते हैं अंदरूनी मामला है, वहां पे स्कूल कॉलेज का बिस्टूअल से होता है, वहां पे कॉलेज का डीन होता है, इंस्पेक्टर होता है, उनको ये हल करने दो, तुम्हारा काम नहीं। तुम कमून की किसी चीज में जंप लगा के आग लगाने के लिए वहां से आओ, अपनी जो तुम्हारी जगह है तुम उसको संभालो। फिर उसने कहा कि जी ये जो ड्यून जाके होती हैं, जो कि खुद वो हर वक्त पहनती, वो ममनू करार देना चाहिए क्योंकि उसको मुसलमान पहनते हैं, मतलब देखे ना।
1: तो लुबना, इस पर जो सियासी बाकी जमातें हैं जिनको गैर मुल्कियों ने वोट दिए हैं, SF क्या कहती है, रेडिकल वेंस्टा क्या कहती है, इन्हें सिस्टम क्या कहती है?
0: राय साहब इतना कुछ इतने कम अरसे पहले तो कंडम करते हैं, लास्ट लुके ने कल जाकर पियाना रवि की बात करते हैं, जो गलत बात है, हम अपने माशरे के लिए जो अच्छाई होगा हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं कि खुद आप वो जैकेट पहने जो भी पहने और आप हद तक आ जाए ना। देखिए कमून का काम है कि जो उनके कमून के अंदर मामला है वो उसको हल करे, ठीक है। जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं वो मतलब कानून बनाते हैं, उनका कोई काम
1: लुबना
0: नहीं कि
1: कम्यून
0: वो
1: में कौन काम कर रहा है?
0: उनमें जो, तो अभी तो बेचारे जो हुए हैं, मेरा आप लोगों से वादा था कि इनसे मैं पूछूंगी या बुलाऊंगी कि बताएं आप क्या कर रहे हैं। अभी जो ही हुकूमत बनी है उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, अभी तो अल्लाह अल्लाह करके वापस सारे काउंसलर आए हैं, तो मेरी किसी से कोई रब्ता नहीं है, सिवाय के मैं अपने कमून में जरा जो छिंगपिया में जो हालात है उसके ऊपर बहुत बिजी हूँ कि वो नहीं होने चाहिए। यानी ये पिछले दिनों जो फिर से एक भड़क सी उठी आग कुछ
1: लुबना,
0: नौजवानों
1: आपकी आपका अपना पार्टी में बड़ा असर रसूख है, बड़े लोग आपसे मिलते हैं और बड़ी जगह तक आपकी आवाज पहुंच सकती है, तो ये काम आपको करना चाहिए।
0: नहीं, ये मैं देखे मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मैंने वक्त के साथ ये सीखा है कि पार्टी के जो अंदर से पॉलिसीज बनवाई जाए, अंदर से जो है ये बात की जाए कि क्योंकि सारी चीजों से जब तक आप पैसे नहीं होंगे कुछ नहीं करेंगे। तो मैं जो रेडिकल वेंस्टा का जो बैक कोपन है, तो मैं उस पर फिलहाल छिंगपे पे काम कर रही हूँ कि इनको एक्स्ट्रा वसाइल दिया जाए कि ये जो कण टूटे एकदम सडनली दोबारा पैदा हो गए। आपको याद होगा, आपको जाएगा, हमें बहुत शुरू में पता चल गया।
1: लुबना, यहाँ लोग जो हैं वो डैनल सियासी जमातों के भी मेंबर होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन अपनी जो लोकल जमातें होती हैं पाकिस्तान की उनके भी मेंबर होते हैं, तो फिर क्या हम इनको गिला कर सकते हैं?
0: राय साहब आपको मेरा मौकफ पता है कि बजाय लोग जो कि डैनिश नहीं बोलते घर में तन्हाई से मर जाए, हो जाए, अच्छी बात है, कुछ सुन ले सुना लेते हैं, मुझे इस पे कभी भी एतराज नहीं, ये एक सोशल एक्टिविटी है। मैं कुछ ऐसे ग्रुपों की मेंबर हूँ जो कि अमेरिका की दिलचस्पी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, ये आप इसको ममनूनी करार दे सकते हैं, और आई विल ऑलवेज चूज के लोग घरों से बाहर निकले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और अगर आप गौर करें तो इनमें कोई इतने यंग लोग नहीं है, 50 से ऊपर ऊपर है, सब तो ये उनका जमहूरी हक है, वो किसी भी तंजीम के साथ काम करे, एटलीस्ट दे नो हाउ टू एक्सप्रेस, वो उनके खानदान है पाकिस्तान में, आप इसको ऐसे ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ डेली सियासत में मुलव्वस हो, नहीं ऐसे नहीं, मैं कभी भी इसके हक में नहीं।
1: लुबना, पिछले दिनों आप एक प्रोग्राम में गई हुई थी तो हमें भी इत्तेफाक से मौका मिला, तो वो अभी तक जो है वो आप वहाँ आपकी मौजूदगी का धुआं अभी तक उठ रहा है।
0: मेरी मौजूदगी का, मैं आग नहीं लगाती, मैं आग बुझाती हूँ, कहाँ पे धुआं किसकी बात कर रहे हैं
1: आप? चलो शकुर साहब, आप सुन रहे हैं?
2: जी जी जी जी जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ।
1: आप भी सियासतदान है, लुबना भी सियासतदान है,
2: समझ आ गई होगी।

ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। उसके बाद अब ये देखें, उसके बाद जब आपको ये देते हैं तो वहां पे बकायदा एक आपकी साइटेशन पढ़ी जाती है, आपकी क्रेडेंशियल्स पढ़े जाते हैं, आपको क्यों दिया जा रहा है। वो बकायदा आपको एक रिटर्न में मिलता है, जहां आपको लिखते हैं रिटर्न में कि हम आपको ये मेडल इसलिए दे रहे हैं। तो उस पे मैंने कल भी इस पे बकायदा जो है इस पे थोड़ी रोशनी डाली, और वो साइटेशन जो है मैंने घर से मेरे पास पड़ी हुई है, इन्होंने क्यों दी। और उसमें जाहिर बात है मेरा जो पॉलिटिकल वर्क है पिछले 20 साल से आज तक के, मैं बड़े ऑनर और बड़ी हम्बल होके, बहुत हम्बल होके, बहुत आजजी में ही मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे बताएं और किसी ने कभी कश्मीर की जो जो इशू है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर के साथ बहस की हो, बता दे मुझे अगर यहाँ है कोई और। तो मैं बहुत आजजी से ये बात कर रहा हूँ वहां पे, इस वजह से उन्होंने ये जाहिर बात है मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, तो फिर वो नोट करते हैं हर इदारे, यहाँ तो गया मैं इसराइल के खिलाफ बोलता हूँ, उनके इदारे सारी चीज नोट कर रहे होते हैं, रिपोर्टें भेज रहे होते हैं, हमारे भी इदारे सब हर किस्म के इदारे, ये तो एक आम चीज है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस क्या इशू को चला, मैंने इसको अपना कोर इशू बनाया जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, मैंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ इसके ऊपर बात की, उसने मुझे जब इनकी ग्रीन डील हुई इसके साथ क्या है क्या इसे कहते हैं इंडिया के साथ, उस पर मैंने रफर डाला, जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए थे तो पार्लियामेंट में मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या कहते हैं मेरी बड़ी तर्क कलामी हुई, वहां पे बहस हुई। और है कोई और जिसने यहाँ कभी ये किया हो, जिसने कश्मीर के इशू को जो पाकिस्तान का कोर इशू है फॉरन पॉलिसी के हवाले से, मैं तो ह्यूमन राइट्स की वजह से बोलता हूँ ना, तो आप मुझे बताएं कि किसी ने किया यहाँ पे, कभी किसी ने इस लेवल पे बात की है कश्मीर की। हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी आजसी से ये बात कर रहा हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि मैंने ये की, और मैंने लगातार 3.5 साल इसको किया, कलम लिखे इसके ऊपर, और इसको मैं हाईएस्ट डेनिश पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल पे ले गया। कुरान पाक की बेहुर्मती जब होती थी यहाँ पे, क्या मैं वो पहला और वाहिद सियासतदान नहीं था जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बिल पेश किया कि कुरान पाक की बेहुर्मती को खत्म किया जाए। है कोई और जिसने ये किया हो? है, अगर है तो मुझे बताएं। तो इस तरह बहुत सारे और, जहां कभी पासपोर्ट पे बात हुई, जब पासपोर्टों में सख्ती हो रही है कोई और आवाज बोल रही है? मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर था मैं इस पे और बोलता था। और इसके अलावा मैंने हमेशा अपने काम में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान और डेनमार्क के टाइज जो है वो बेहतर से बेहतर हों, और ये वही बात होगी, पस पर्दा बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। मैंने हमेशा अपनी कोशिश की कि मैं इस पे पाकिस्तान और डेनमार्क के हालात बेहतर से बेहतर करूं, क्योंकि डेनमार्क मेरा मुल्क है, मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, ये मेरी मिट्टी है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे रूट्स हैं, वो भी मेरा मुल्क है, जो मोहब्बत है पाकिस्तान से मेरा हमेशा एक तल्लक देगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसराइल पर है कोई मुझसे स्ट्रांग आवाज, वोकल आवाज है सियासी आवाज जो इसराइल को कंडेम कर रहे हो? है कोई और, कोई माइकल लाल इस क्या कहते हैं सियासी निजाम में जो ये अपनी पार्टी पॉलिसी रखे कि हकूमत जो स्टेट ऑफ इसराइल है उसके डिसॉल्व किया जाए और फ्रॉम द रिवर टू द सी एक स्टेट बनाई जाए जिसमें सब रहे और सबके इक्वल राइट्स हो? है और कोई माइकल लाल इस को जो सियासतदान बनते हैं जिसने जो ये बात करे? सब तो जब इसराइल बर्बरियत कर रहा था सबको पता है कि इसराइल के खिलाफ बोलना तो अपनी मौत को वो क्या उसे कहते हैं सियासी मौत है, सब अपने बिलों में वो छुप गए थे, चले गए थे। है कुछ सियासतदान जो इस तरीके से बोले? मैंने तो हमेशा खुल के बोला है, मैंने तो हमेशा खुल के बात की है। और आपको पता है कि जब यात्री श्री रविशंकर आए थे और अपने डेलीगेशन लेके, और जब उन्होंने क्या कहते हैं अपने प्रोपगंडा करने आए थे, मैंने उस पर रातों रात जो है कश्मीर सोसाइटी उनके साथ मैंने उनके साथ मिल के प्रोटेस्ट वहां पे किया, और हमने इतना किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर आई, श्री रविशंकर को जो है बयान देने पड़े क्या कहते हैं इसके ऊपर मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा हम 15 मुल्कों में गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, डेनमार्क में जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। आपको याद है जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब आए थे वहां पे मैंने सेक्रेटरीट के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के बाहर खड़े होके जब वो उनको वेलकम किया जा रहा था वहां पे प्रोटेस्ट किया अपने पार्टी के साथ और कुछ लोगों के साथ। तो मैंने तो हमेशा खुल के बोला हूँ, मैं ये बड़ी आजी से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक काम कराता है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अपने तौर पर अपने करियर में जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, मैं उस वक्त 18-20 साल

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वजीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वजीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वजीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया कियास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।